भाई एक टाइम था लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म से मूवीज पे काम करने के लिए जाते थे तो उन्हें बड़ा ही प्राउड फील होता था, लेकिन इससे ज्यादा प्राउड का मोमेंट क्या होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक शो मूवी बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी भाई साहब। हाँ, सो हेलो हाई, मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड लोग जो है ना अब सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी एक्शन धमाका चाहते हैं। एंड वो कहते हैं ना जो उनके अंदर का एक दबा हुआ शैतान है उसको देखना चाहते हैं। सो ये हमने देखा कहाँ? हाँ, ऐसी भौकाली परफॉर्मेंस हमने देखी मिर्जापुर में, जिसमें यूपी का आप कह सकते हैं वो फ्लेवर डाला गया है जो अब कंट्रोल में लाया जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वॉयलेंस। एंड इसमें मिर्जापुर में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कैरेक्टर्स थे वो चाहे गुड्डू भैया हो, कालीन भैया हो, मुन्ना भैया हो, ये सब मूवी में वापसी कर रहे हैं। राइट, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, हर कोई आपको इसमें नजर आ रहा है और इसका टीजर निकल कर आ गया है। अब इस मूवी में क्या मसाला होगा एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म को ये पछाड़ पाएगी, क्या होगी फैन फॉलोइंग की इंपॉर्टेंस, आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: अरे अरे अरे अरे भाई, जो बात पहले में है दूसरे में है वो तीसरे में नहीं है। पर हाँ ठीक है, बट हमें कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो हम चाहते हैं उसे रिपीट कर ले। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मुझे कोई मॉल में जाकर किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन की डेनिम जीन्स अच्छी लग गई ना, मैं उसी डेनिम को बार बार रिपीट कर लेती हूँ कि ठीक है ऊपर नीचे का थोड़ा सा शेड ले लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं। एनीवेज, मूवीज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम बाहुबली मूवी की बात करें तो बाहुबली मूवी का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब तीसरे से भी एक्सपेक्टेशंस यही है, राइट? आपने सही सुना, प्रभास, राणा दग्गुबत्ती, अनुष्का, हर कोई कहीं ना कहीं इसी बात की हिंट दे रहा है कि इस मूवी का तीसरा पार्ट आ सकता है। ओ माय गॉड, लेट्स सी मूवी के तीसरे पार्ट में वो मजा आता है या नहीं जो पहले और दूसरे में आया। बिकॉज इसमें हमेशा यही कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया है कि चीजें थोड़ी अधूरी रह गई हैं और उनको पूरा करने के लिए एक पार्ट और बना दिया जाए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: You know what? अगर आप एक मूडी इंसान है, मतलब सुबह खुश, दोपहर में परेशान और रात में रो रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है यार, या फिर कुछ गड़बड़ नहीं है। हेलो, हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। जैसे अपन लोग किसी शादी में जाते हैं, किसी बड़े फंक्शंस में जाते हैं, कोई इवेंट कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं, तो हमें वहां पे चाहिए होती है क्या? वैरायटी, राइट? सो लाइफ में वैरायटी हम ना जब मिस करने लगते हैं ना, तो हम अपने अंदर ही मूड वाइज, मूड स्विंग्स की वैरायटी बनाने लगते हैं, राइट? एंड जो लोग मूड स्विंग्स के शिकार होते हैं ना, वो एक सर्वे में कहा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो अपने मूड स्विंग से ही अपने आप को सेटिस्फाई कर देते हैं। हाँ, एक सर्वे में ऐसा कहा गया है। तो आप कौन से शख्स हैं जिन्हें मूड स्विंग्स होते हैं या नहीं होते हैं? 9151 8963 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा.
5: हाँ जी जी.
4: आधा kg मसूर दाल.
5: जी जी.
4: काजू किशमिश. ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं.
5: जी जी.
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर.
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com. ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
4: वाजी, क्या बात जी.
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: You know what, जब आपके डैड ही डिसीजन मेकर होते हैं स्पेशली आपके काम को लेकर, तो चिंताएं थोड़ी कम हो जाती हैं ये सोचकर कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा नहीं होगा, डैड का भी होगा, तो डिसीजन थोड़ा वाइजली ले लिया जाता है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि अभी कौन है जो फिल्मों से जुड़ा हुआ डिसीजन थोड़ा वाइजली ले पा रहा है, बताऊं? सोनाक्षी सिन्हा। हां जी, अभी रिसेंटली वो अपने घर के ही होम प्रोडक्शन हाउस की एक मूवी में नजर आने वाली हैं, जिसका नाम है क्या, निकिता रॉय। क्या लगता है ये मूवी कब रिलीज होने वाली है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे अरे बस अभी रिलीज होने को आ रही है या फिर रिलीज तो हो चुकी होगी। नहीं नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। एक्चुअली ये मूवी रिलीज होनी थी 27 जून को, लेकिन अब ये मूवी 18 जुलाई को रिलीज होगी। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी मूवीज ना लाइंड अप है और फिल्म मेकर्स को ऐसा लग रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी को ऐसा लग रहा है कि एकदम भीड़ में मूवी रिलीज करने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा आराम से धीमी आंच में मूवी को पकने दीजिए, उसके बाद रिलीज करी जाएगी। मतलब सोनाक्षी सिन्हा को लेकर दिल में ऐसे टिकलिंग भी नहीं होती है, पर हाँ ठीक है, हो सकता है मूवी वाव निकल कर आए या फिर ऐसे ही निकल के चली जाए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
3: छत पक्षियां रंगा दी, धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया,
4: दोनों को ही चाहतो ना।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

पहले आप पार्टिसिपेट कर लीजिए द लायन सिटी चैलेंज में, जो कि सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो है, जहां आपका आईक्यू लेवल अलग अलग तरह से, आप ज्योग्राफिकल मान लीजिए, आप हिस्ट्री में अगर इंटरेस्टेड है, आप लाइफस्टाइल बॉलीवुड में इंटरेस्टेड है, अलग अलग कैटेगरीज में अगर आपकी नॉलेज एग्जिस्ट करती है, सो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्स्ट कीजिए लायन LION और भेज दीजिए 9151896 पर। मैं आज पर वसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और मेरा IQ लेवल बॉलीवुड की तरफ थोड़ा और बढ़ता जा रहा है, और क्या निकल कर आ रहा है बताती हूँ जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
0: रहो। इमेजिन हम हमेशा ना फीमेल एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, औरतों को लेकर बड़े बड़े मतलब वो कहते हैं ना एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, लेकिन अब जब मूवी आ रही है और उसे हम ना देखें ऐसा हो सकता है? ना ना ना ना यार, आलिया भट्ट एंड शार्वरी आपको सीक्रेट एजेंट की तरह नजर आने वाले हैं। किसमें? अल्फा मूवी में, दैट इज रिलीजिंग ऑन 3rd of July अक्रॉस द आईलैंड यार। सो हेलो हाई, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, एक ऐसी स्पाई यूनिवर्स YRF की तरफ से जिसमें फीमेल लेड एक्शन सीन्स आपको दिखाए जाएंगे, और आलिया ने, शार्वरी ने खुद मेहनत कर करके ये सब दिखाए हैं यार। 100 करोड़ का इस मूवी का बजट है एंड अमेजिंग तरीके से आपको इस मूवी में सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारा अलग टेस्ट आप कह सकते हैं, अलग नीश आप कह सकते हैं जो हमारे लिए लाया गया है थिएटर्स में। सो गो फॉर इट यार। हाँ, 3rd of July को आपके लिए अक्रॉस द आइलैंड रिलीज हो रही है, विच इज ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर ऐसी और भी काम की बातें बताती रहेगी, सो डोंट गो एनीवेयर।
2: दे वर क्रिएटेड।
3: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
4: अल्फा, द न्यूएस्ट चैप्टर इन द YRF स्पाई यूनिवर्स।
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
4: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
6: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
4: बोर्न टू फाइट, बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd July आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: जोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: देखो मूवीज की अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना तो एक्स वाई जेड वाई ए बी सी या ना पता नहीं क्या क्या निकल कर आएगा। मतलब आप उस मूवी की क्वालिटी जज कर लेंगे। यार इसके टीजर में ट्रेलर में वो मजा नहीं है, वो बात नहीं है, क्या करेंगे देखकर। मतलब आजकल लोग अपने टाइम को एक्चुअली बहुत प्रेफरेंस देते हैं और उनको थिएटर्स तक बुलाना एक बहुत बड़ा टास्क है। सो हेलो हाई, मैं आरजे मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट कि रिसेंटली अजय देवगन ने आए हाय अच्छा खासा जोर लगा लिया है। बिल्कुल अक्टूबर 2027 में इनकी एक मूवी रिलीज होने वाली है। और पता है आपको उस मूवी का नाम क्या है? हाँ भाई, चौहान। राइट, मूवी का नाम है चौहान। और उस मूवी का एक डायलॉग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पठानों से कहना चौहान आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस मूवी में फुल ऑन एक्शन क्लाइमेक्स तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी में ऐसा कहा जा रहा है कि धमाल 4, दृश्यम 3, गोलमाल 5 और शैतान 2 का भी हल्का हल्का पार्ट दिखाया जाएगा। मतलब उसी की ये कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी निकल कर आएगी। तो डायरेक्टर लव रंजन है तो एक्साइटमेंट तो बनती है बॉस। हाँ आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। अजय देवगन के फैन ना सही, आलिया भट्ट के फैन है क्या आप? चलो ठीक है, बताती हूँ जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल क्या चल रहा है।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: अब ना बहुत मोनोटोनस सा हो गया है, अब ना वापस से वो वाली मूवीज चाहिए, फैमिली टाइप। वो बागबान आई थी, याद है आपको? कभी खुशी कभी गम आई थी, हाँ, और यादें मूवी आई थी जिसमें फुल फैमिली एक साथ दिखाई जा रही है, एक ड्रामा निकल कर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग आंसू बहा बहा कर डांस कर रहे हैं। वो इमोशनल पार्ट जो है आजकल की मूवीज में मिसिंग है बॉस। सो हेलो, हाई, मैं आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड देखते हैं मूवीज का सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा, लेकिन आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस चल रही है, राइट? और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें मसाला डाला जाए, तो डाल सकते हैं यार। आपका आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप भी अपने आईक्यू लेवल को एक गेम के थ्रू यूज करना चाहते हैं और डेफिनेटली बहुत सारे कैश प्राइजेस और गिफ्ट्स जीतना चाहते हैं, तो जीत सकते हैं आप। इसके लिए पार्टिसिपेट करना है सिंगापुर के स्मार्टेस्ट गेम शो, दैट इज द लायन सिटी चैलेंज, जो कि मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है। क्विकली टाइप कीजिए अपने मोबाइल पे लायन LION और हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कीजिए 9151896 3 पर। मैं आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ थी। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट, तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
4: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
1: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे,
2: बेबी बूम नहीं बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: अर्जुन आएंगे
1: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वो वक्त शुरू हो चुका है जिसे हम कहते हैं हमारे थर्सडे का रिवाइंड बटन। एंड जस्ट इन केस ये आवाज आपके कानों तक सैटरडे को पहुंच रही है इसका मतलब आपने ऑनकोर में ट्यून इन किया हुआ है। वेल मस्ती 90s मिक्स टेप हमारा फेवरेट वाला टाइम जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है और मैं हूँ 90s वाली अंतरा यहाँ पर आपके साथ। भाई ये वही शो है जहाँ पर सिर्फ गाने नहीं प्ले होते हैं, यहाँ पे यादें प्ले होती है। कभी सोचा है 90s को याद करते ही कितना सब कुछ हमें याद आता है, यू नो पिक्चर्स कुछ याद आते हैं, आवाजें याद आती है, सुबह वो दूध वाले की साइकिल की घंटी याद आती है, स्कूल के असेंबली की बेल याद आती है, दूर से आती प्रेशर कुकर की सीटी उसकी याद आती है, गली में आइसक्रीम आइसक्रीम और वो कुल्फी वाले के ट्रिंग ट्रिंग उसकी आवाज आती है, कैसेट रिवाइंड होने की वो घर घर वो आवाज आती है, दूरदर्शन के सिग्नेचर ट्यून की आवाज, लैंडलाइन की वो ट्रिंग ट्रिंग, हर आवाज का मतलब होता था, हर साउंड के साथ एक रूटीन जुड़ा होता था और बिना देखे ही पता चल जाता था कि भाई अब क्या होने वाला है। 90s का बॉलीवुड भी कुछ ऐसा था, नहीं फिल्म शुरू होने से पहले ही बैकग्राउंड म्यूजिक बता देता था कि रोमांस आने वाला है या एक्शन या कॉमेडी। म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता था, कहानी भी सुना दिया करता था और शायद इसीलिए 90s की मेमोरी इतनी ज्यादा हमें ताजी टाइप की एक फीलिंग देकर जाती है क्योंकि वो सिर्फ आंखों में नहीं कानों में भी बसी हुई है। आज नोटिफिकेशंस की आवाज सुनते ही फोन उठ जाते हैं, तब एक साइकिल बेल सुनते ही दोस्त बाहर भाग के आ जाते थे, एक विसल सुनते ही क्रिकेट मैच शुरू हो जाता था, एक कैसेट की क्लिक की आवाज का मतलब होता था कि अब गाने शुरू। सो बस चलिए ये सिर्फ यादों को नहीं उनकी आवाजों को भी रिवाइंड करते हैं, कुछ बचपन, कुछ मोहल्ला, कुछ शरारते, कुछ वो हसीन हसीन प्यारी प्यारी हमारी यादें बहुत सारे स्माइल के साथ। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप एंड यस बने रहिए मेरे साथ और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: आर यू रेडी?
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: भाई यहाँ पे 90s की बात हो रही है जहाँ पे जुगाड़ वाज ऑलवेज द विनर, डोंट यू थिंक सो? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप, दैट इज राइट। 90s के बच्चों के पास रिसोर्सेज शायद कम होंगे लेकिन आइडियाज भाई हमारे पास अनलिमिटेड हुआ करते थे। और अगर कोई चीज सच में हमारी जनरेशन को डिफाइन करती है ना तो वो है जुगाड़। स्कूल में उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था पेंसिल छोटी अगर हो जाए तो उसके पीछे पेन का कैप लगा दो, राइट? याद आया आपको? पेंसिल इतनी छोटी हो जाती थी शार्पन कर करके कि प्रॉपरली पकड़ना उसको मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब उसको फेंकेगा कौन? फेंकते थे तो हम बिल्कुल, हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था फेंकने का। एक एम्प्टी पेन का कैप उठाओ, पेंसिल को उसमें फिट करो और लो जी ब्रांड न्यू लॉन्ग पेंसिल रेडी। फनी पार्ट मुझे ये लगती थी कि ये किसी ने हमें सिखाया भी नहीं था, क्योंकि देखिए कोई यूट्यूब नहीं था, कोई DIY वीडियोज नहीं थे, कोई लाइफ हैक्स बताने वाला नहीं था। बस एक एक बच्चा करता था और अगले हफ्ते इट्स लाइक एवरीबडी, इट्स लाइक इट यूज टू बी लाइक अ ट्रेंड, राइट? और उस वक्त हमें लगता था कि क्या ही हमने इन्वेंशन कर डाला है। सच कहूं 90s के बच्चे ना चीजें जल्दी रिप्लेस नहीं करते थे, हम उनकी लाइफ बढ़ा दिया करते थे। हाउ अबाउट दैट, है ना? सच अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट, राइट? पेंसिल छोटी तो कैप लगा दो, इरेजर आधा हो गया तो दोनों टुकड़े साथ में यूज कर लो, क्रेयॉन टूट गया लेकिन कलर तो फिर भी करेगा ना, क्योंकि उस वक्त एक चीज की वैल्यू होती थी और जब तक वो चल सकती थी चलती थी। और जब पेंसिल आधी होती है तो लोग नहीं निकाल लेते हैं, और कई कई बार तो मतलब खो जाती है तो इतना ज्यादा वो नहीं होता है कि अरे पेंसिल खो गई, और तब पेंसिल का रिटायरमेंट भी हम डिसाइड क्या करते थे हम। ऑनेस्टली वो पेन कैंप वाली पेंसिल हाथ में पकड़ कर लिखने का अलग ही स्वैग होता था। नहीं लगता था इंजीनियरिंग भी कर ली, राइटिंग भी हो गई। इसीलिए आई थिंक जब भी मैं बात करती हूँ तो 90s का बचपन इतना ज्यादा क्रिएटिव लगता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स देखते कम थे, सोल्यूशन पहले ही हमारा बन जाता था। ऑनेस्टली मतलब सच्ची में आज भी हम लोग जब बड़े हो गए हैं, अडल्ट लाइफ जी रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हो गया उसका हम जुगाड़ कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। इट इज जस्ट टैटूड इन आर होल पर्सनैलिटी, वी ऑलवेज फिगर अ वे आउट सम हाउ, एंड इज़न्ट दैट अमेजिंग एंड फैंटास्टिक, राइट? मुझे तो बहुत ही कूल लगता है आज भी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून। भाई ये सारी बातें तो चलती रहनी चाहिए लेकिन साथ साथ में 90s वाले गाने भी चलते रहने चाहिए। नहीं, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
4: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: They were not chosen.
3: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलावेंगे.
4: Alpha.
2: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
2: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
2: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
6: 3, 2, 1.
2: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है.
0: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: ये वाली चीज तो इतनी ज्यादा हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊं, और आपने भी किया होगा इफ यू हैड अ साइकिल व्हेन यू वर ग्रोइंग अप 90s में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, और यहाँ चल रहा है क्या, ऑफ कोर्स मस्ती 90s मिक्स टेप। इस वक्त और क्या ही चलेगा भाई, 90s में साइकिल चलाना इट्स जस्ट वॉज नॉट अ ट्रांसपोर्ट, मात्र एक वैसा कुछ नहीं था, एक फ्रीडम वाली फीलिंग आती थी कि हम थोड़े से बड़े हो गए। कितना शौक था ना कि हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसा कर लेगा, हम बड़े हो जाएंगे तो हु न्यू अडल्टिंग वॉज अ ट्रैप। बट नहीं, ये सारी बातें नहीं करेंगे, वापस 90s में चलते हैं। उस फ्रीडम के साथ एक प्रॉब्लम साइकिल में फ्री मिलती थी, कभी भी और कहीं भी साइकिल की चेन उतर जाती थी। फुल स्पीड में आप चला रहे साइकिल, हीरो एंड हीरोइन वाली फीलिंग आपको आ रही है, और अचानक खड़ाक पेडल जो है वो हल्का हो गया, फिर वो सर सर सर सर ऐसे चलता रहता है, एंड फिर हमें आ जाता है यार चेन उतर गई यार। अब आज की तरह रोड साइड असिस्टेंस थोड़ी ना थी उस टाइम पे, ऐसा कोई ट्यूटोरियल भी नहीं देख सकते थे कि हाउ टू पुट द साइकिल का चेन बैक, नहीं गूगल नहीं है, बस साइकिल को उल्टा करना और ऑपरेशन शुरू। एक हाथ से चेन उठाओ, दूसरे हाथ से पेडल घुमाओ। अगर जिसने कर रखा है ना, दे नो द ड्रिल राइट, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा सा ऐसे और घुमाओ, और फिर बड़ा ही मुश्किल से चेन अपनी जगह पर। लेकिन सक्सेस के साथ एक चीज गारंटीड मिलती थी, काले काले ग्रीस वाले हाथ, और वो ग्रीस भी ऐसी एक बार लग गई तो पानी से नहीं जाती थी, और कपड़ों पे लग गई तो फिर तो भाई साहब जो डांट पड़ती थी घर पे, क्योंकि वो मम्मी को वो दाग हटाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। सो हाथ पे लग गई तो यू नो साबुन से 3-4-5 बार आप धोए जा रहे हो, लेकिन वो एक वो चिपचिप वाली फीलिंग आती ही रहती थी। तो अच्छा, उस टाइम पे इफ यू जस्ट रियलाइज द फीलिंग, किसी को घिन टाइप के ऐसे के ऐसे वाला फीलिंग उतना नहीं आता था। चेन ठीक हो गई, बस फिर साइकिल पे बैठो एंड अपना जो है चला रहे थे, लेट्स कंटिन्यू। 90s के बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना नेचुरली आई थिंक आता था। टायर में हवा कम है तो पंप ले आओ, बेल नहीं बज रही तो ठोक पीट के उसको चला दो, चेन उतर गई तो हाथ गंदे होंगे, कोई बात नहीं होने दो, चढ़ानी तो है क्योंकि साइकिल तो हमें चलानी ही चलानी है, एडवेंचर रुकना नहीं चाहिए। इतना रियल लगता है ना 90s का बचपन, हम सिर्फ खेलते नहीं थे, चीजें ठीक भी करते थे, और हर रिपेयर के बाद कॉन्फिडेंस डबल हो जाता था। आज हाथ यस साफ रखते हैं, लेकिन तब ग्रीस के वो काले निशान भी एक मेडल के जैसे लगते थे, एक ऐसा प्रूफ कि आज भी पूरा दिन बाहर जी भर के हमने जिया। साइकिल लाओ रे। ऐसा ही ऐसे मूड कर गया, इतनी सारी बात करने के बाद अक्सर मेरा ऐसा जो है मूड बदल सा जाता है, आपका भी बदलता होगा आई एम श्योर। स्टे ट्यून्ड रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: And while I was talking about cycle की चेन उतरना और हाथ ग्रीस से काले हो जाना and दाग लगना, एक और दाग की याद आ गई, क्योंकि उस टाइम पे तो हम ये भी कहते थे ना कि ये दाग तो बड़े अच्छे हैं, मम्मी ये नहीं कहती थी। That is for sure. Radio Masti 24/7 live पर मस्ती 90s mixtape आप सुन रहे हो, मैं हूँ अंतरा आपके साथ यहाँ पर। और भाई 90s के स्कूल लाइफ का ये अनऑफिशियल बैच ऑफ ऑनर, वो स्कूल यूनिफॉर्म पे नहीं, यूनिफॉर्म पे भी दिखता था लेकिन उंगलियों पे पहले दिख जाता था, वो ब्लू ब्लू हमारे इंक वाली उंगलियां। जिस दिन फाउंटेन पेन या इंक पेन यूज करना हमारा शुरू हुआ जिंदगी में, एक तो वो फीलिंग आती थी कि अब हम बड़े हो गए हैं, और एक एक्साइटमेंट से नहीं होती थी, क्योंकि क्या है ना कि आपका जब क्लास चेंज हो रहा है और आप नए टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको पता होता था कि ओ अब से तो हम पेंसिल छोड़ के पेन से लिखा करेंगे। दैट एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू अ स्टेशनरी शॉप एंड एक्चुअली बाइंग योर फर्स्ट फाउंटेन पेन, आई मीन आई एम गेटिंग गूज़बम्स रिमेम्बरिंग दैट। इट यूज टू बी सो अमेजिंग, दैट फीलिंग यूज टू बी सो अमेजिंग एंड सो सैटिस्फाइंग। एंड वो जो एक आता था ना, अब तो हम ऐसा कहेंगे, लेकिन इट ऑल केम विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। ग्रोन अप फीलिंग के साथ ये गिफ्ट भी फ्री में आता था, इंक का लीक, वो चेलपार्क की वो आती थी इंक की बाटल। सो कभी निब से हो रहा है, कभी कैप के अंदर से आ रहा है, कभी शर्ट की पॉकेट में फैल जा रहा है, कभी सीधा हाथ पे आ जा रहा है, फिर पूरा दिन हमारा जो फिंगर और थंब ब्लू कलर के, मतलब क्लास में देखते ही समझ में आ जाता था कि भाई आज तो होमवर्क इंक पेन से लिखा गया है। अच्छा, वॉशरूम में जा जा के हाथ तो ज़रूर धोया करते थे साबुन लगा के एंड रगड़ के उसको, लेकिन वो ब्लू स्टेन इतनी आसानी से वी ऑल नो जाता नहीं था। एक दो दिन तो परमानेंट टैटू की तरह वो साथ रहता ही रहता था। एंड देन यू नो डांट भी पड़ती थी घर पे जब रात को, यू नो बैग तैयार करते वक्त हम जब रिफिल किया करते थे उससे, तो फिर स्पिल हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इनिशियली यू आर लर्निंग टू डू सो यू विल मेक मिस्टेक्स एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट वो हमारे लिए डांट के साथ आता था। बट वेल सो वेल इट यूज टू बी लाइक अ सेरेमनी राइट, इंक की बॉटल खोलो, पेन खोलो, रिफिल करो और प्रे करो कि टेबल क्लॉथ बच जाए और साथ में हम भी। आजकल तो उसके बाद तो काफी सारा इवॉल्व हुआ राइट, जेल पेन्स आए एंड पायलट पेन्स आए, रोलर पेन्स आए, इट्स सो कन्वीनियंट राइट। बट इंक पेन को यूज करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी और एक प्राइड भी आती थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ब्लू फिंगर्स देखकर कभी एम्बेरसमेंट नहीं होती थी, उल्टा लगता था कि भाई आज काम किया गया है हमारा। हाय राम, 90s के स्कूल मेमोरीज सिर्फ आई डोंट थिंक सो रिपोर्ट कार्ड्स में थे, उंगलियों के उन नीले निशानों में भी लिखी हुई थी हमारे। स्कूल बैचेस तो साल बदलते ही बदल जाते थे, लेकिन इंक के वो स्टेन्स और उनके साथ जुड़ी वो यादें वो कभी नहीं मिटती मेरे दोस्त। वह आप तो जानते ही है, मैं बिल्कुल बहाव में बहती हुई जाऊंगी, नॉन स्टॉप बोलती हुई जाऊंगी, बीच में अब गाने आ जाने चाहिए 90s वाले, लेट्स गो।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtapes with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live. 25.

0: पैसों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: जहां पर हीरो हीरोइन के एक्सेसरीज भी एक्टिंग करने लगे तो समझ जाओ आप 90s की मूवी देख रहे हो, क्योंकि उस टाइम का कैमरा वर्क कुछ ऐसा ही हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं हूं अंतरा आपके साथ। एंड 90s के बॉलीवुड की भी बीच बीच में बात होनी ही चाहिए, बिकॉज उसके बिना तो बहुत अधूरा है मेरे दोस्त। अच्छा, अब अगर आप याद करें और ध्यान से याद करें और देखें, तो सिर्फ एक्टर्स नहीं एक्टिंग

कि हर हैंड मूवमेंट में इमोशन और ज्यादा फील हो, इसीलिए स्क्रीन पर छोटा सा जेस्चर भी दिल तक पहुंच जाता था। एंड नोटिस क्या है, रोमांटिक सीन में चूड़ियों की आवाज बहुत सॉफ्ट एंड मीठी मीठी सी आती थी, शादी के सीन में थोड़ी ज्यादा फेस्टिव आती थी, इमोशनल सीन में बस एक दो हल्की सी खनक आती थी और पूरा मूड चेंज हो जाता था। 90s के फिल्म मेकर्स को पता था दैट कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक से पहले एक छोटी सी साउंड भी कहानी सुना देती है। आज के सिनेमा में रियलिज्म जो है वो ज्यादा है, तब फीलिंग्स को थोड़ा और ब्यूटीफुल यू नो बना दिया जाता था। एंड ऑनेस्टली 90s की हीरोइन जब खिड़की के पास खड़ी होकर धीरे से पर्दा हटाती थी और डायरी बंद करती थी या बालों को कान के पीछे करती थी, उस सीन का आधा मैजिक उन चूड़ियों की खनक में छुपा हुआ होता था। हाय, 90s के रोमांटिक सीन्स आज भी इतने कितने कमाल के लगते हैं, मतलब वी फील देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, क्योंकि उस जमाने में ज्वेलरी सिर्फ कॉस्ट्यूम्स नहीं थी, स्क्रीन प्ले का हिस्सा थी। और आज भी कोई भी यू नो बॉलीवुड फिल्म में वो मीठी सी छन छन सुनाई दे जाए तो दिल तुरंत बोलता है कि प्यार होने वाला है, या फिर यू नो हीरोइन इज थिंकिंग समथिंग। वी ऑलवेज यूज टू गेस लाइक दैट, इट जस्ट एनहांस्ड द होल फीलिंग सो मच। लव 90s, लव द फीलिंग्स ऑफ 90s। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। इफ यू आर लविंग द शो देन स्टे ट्यून्ड, जाने की कोई जरूरत ही नहीं है कहीं पे, आ जाओ आ जाओ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ। एंड चलिए बात को मस्ती 90s मिक्स टेप पे आगे बढ़ाते हैं और नटराज की पेंसिल के बारे में बात करते हैं। व्हाई स्पेसिफिकली दिस पेंसिल? बिकॉज आई थिंक इसका स्पेसिफिक डिमीनर जो है हमारे यादों के गलियारों में टैटू हो रखा है। That is right. भाई 90s में हमें पता ही है कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जिनके लिए कभी एड देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी स्कूल के क्लासरूम में ही डिसाइड हो जाया करती थी। और उनमें से सबसे आइकॉनिक नाम था नटराज की पेंसिल। वो ब्लैक और रेड कलर का डिजाइन, ऊपर गोल्डन कलर की राइटिंग और नई पेंसिल की वो फ्रेश लकड़ी वाली खुशबू। हाथ में आते ऐसा लगता था अब हैंड राइटिंग देखना मेरी कितनी कमाल की आएगी। एंड सच बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है कि पेंसिल वही थी, होमवर्क भी वही था, लेकिन नई नटराज मिलते ही कॉन्फिडेंस डबल हो गया। स्कूल में पेंसिल भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा हुआ करता था। किसी के पास शार्पन नटराज, किसी के पास छोटी सी लास्ट एज वाली नटराज, कोई उसके ऊपर नाम लिखता था, कोई फेवरेट स्टिकर चिपका देता था। और अगर किसी दोस्त ने पूछा कि एक पेंसिल देना, तो पहले देखते थे वापस करेगा भी या नहीं। और जब टीचर्स कहते थे कि पेंसिल निकालो, तो पूरी क्लास एक साथ वुडन पेंसिल्स डेस्क पे वो टकराने की एक आवाज आती थी। डू यू रिमेंबर दैट साउंड? 90s में स्टेशनरी सिर्फ स्टेशनरी नहीं होता था। एंड दैट इज व्हाई टिल डेट व्हेन आई गो टू अ स्टेशनरी शॉप आई बिकम अ किड। लाइक मैं घंटों स्टेशनरी शॉप में बिता सकती हूँ, मुझे इतना मजा आता है। क्या कमाल कमाल की चीजें अभी भी, मतलब अब तो बहुत ही एडवांस स्टेज में चले गए हैं, इतनी सही चीजें मिल जाती है ना कभी कभी। आई थिंक इमोशंस हमारे जुड़े हुए उससे। सो नटराज पेंसिल, अप्सरा की इरेजर, कैमलिन का वो ज्योमेट्री बॉक्स, चलपाक की वो इंक पॉट, राइट? सब के अपने अपने फैन क्लब्स थे। आज स्टेशनरी की चॉइसेस 32,000 हैं। मैकेनिकल पेंसिल्स है, जेल पेंसिल्स है, डिजिटल स्टाइलस है, राइट? लेकिन उस सिंपल सी नटराज पेंसिल का जो कॉन्फिडेंस था, उसका रिप्लेसमेंट आज तक तो नहीं आया। इसीलिए 90s के बचपन में ब्रांड्स फेमस इसलिए नहीं बनते थे क्योंकि उनके एड्स अच्छे थे। वो फेमस इसलिए बनते थे क्योंकि हर स्कूल बैग में उनकी जगह और हमारी मेमोरीज में उनकी जो जगह है वो ऐसी पक्की हो रखी है कि आज भी उससे एक अटूट सा रिश्ता लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कुछ करने वाली थी एंड मुझे पेन नहीं मिल रहा था, तो नटराज पेंसिल जो है उसको उठाते ही एकदम मुझे अरे कितने दिनों बाद मैंने देखा मेरे पास ये पेंसिल भी थी। ओके, एंड देन आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स आई रोट व्हाट आई वाज राइटिंग, बट इट हैपेंस, राइट? इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी, जस्ट अ पेंसिल, बट इट्स अ मेमोरी। व्हाट टू डू? दैट्स 90s फॉर यू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: लास्ट एपिसोड में आई रिमेम्बर आई वॉज टॉकिंग अबाउट द किसमी बार एंड कैसे उसका रैपर कभी सीधा खुलता ही नहीं था बिकॉज उसका प्लास्टिक रैपर वो ऐसे ही बनाया गया था। आई कैन टेल यू वन मोर थिंग अबाउट अनदर यू नो चॉकलेट और टॉफी। कम 90s की यादें ताज़ा करते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूँ अंतरा आपके साथ। भाई एक्लेयर्स करके एक हमारी टॉफी आया करती थी 90s में, इफ यू रिमेम्बर 90s के। वैसे भी ये कुछ टॉफी सिर्फ टेस्ट के लिए आज भी हमें वो इतना ज्यादा शायद याद नहीं करते, बट उनके साथ होने वाली स्ट्रगल के लिए उनको जरूर याद किया करते हैं। नाउ एक्लेयर्स, ओके, टॉफी मुंह में जाने से पहले ही एक चैलेंज कंप्लीट करना पड़ता था कि उसका रैपर उससे अलग करो, लेकिन रैपर का मूड तो कुछ और ही होता था। उसे लगता था मैं तो इस टॉफी को छोड़ने ही नहीं वाला। आप धीरे धीरे उसको रैपर को खोलने की कोशिश करो, रैपर के साथ चिपका हुआ है ना आपको टॉफी, मेल्टेड टॉफी बेसिकली मिलता था, तो उसको हटाना थोड़ा पुल करना पड़ता था, टॉफी का थोड़ा सा हिस्सा भी रैपर के साथ आ गया तो फिर हम क्या करते थे या तो यू नो नेल से हल्का हल्का निकाल कर वो स्क्रेप कर लेते थे, धीरे धीरे निकालते थे, या फिर जो कैरमल रैपर पे चिपक जाता था उससे भी वैसे वेस्ट नहीं करते थे हम लोग उसी को चाट लिया करते थे। एकदम क्लीन हो जाना चाहिए है ना, किसी को जल्दी एक्चुअली होती नहीं थी, हम पेशेंटली रैपर को हटाते थे क्योंकि पता था कि अंदर जो टेस्ट है उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो बिल्कुल बनता है। 90s में वैसे भी बहुत सी चीजें इंस्टेंट नहीं मिलती थी, कैसेट रिवाइंड होती थी, टीवी प्रोग्राम का वेट होता था, फोटो डेवलप होते थे और एक्लेयर्स भी आराम से खुला करती थी, शायद इसीलिए उनका मजा भी अलग था। आज पैकेट्स इजी से टियर थिन है, राइट, ज़िपलॉक है एंड एवरीथिंग ओपन्स इंस्टेंटली। तब एक छोटी सी टॉफी भी पेशेंस टेस्ट कर लिया करती थी जनाब। एक्लेयर्स सिर्फ एक कैंडी नहीं थी, वो हमें बिना लेक्चर दिए एक बात सिखा जाती थी कि अच्छी चीजें कभी कभी थोड़ा सा वक्त लेती है। एक्लेयर्स नहीं मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है। यस, कंटिन्यू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day. कौन सा हेड, किसका हेड, किस हेड की बात कर रहे हैं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल मस्ती 90s मिक्स टेप की यहाँ पर बातें चल रही है, 90s की बातें चल रही है। 90s वाली अंतरा जो है वो आपके यहाँ पे साथ है। भाई 90s के बच्चों ने कई सारी वार्निंग्स पढ़ी हुई है, लेकिन उनमें से एक वार्निंग ऐसी थी जिसका मतलब शायद किसी को भी बचपन में समझ में नहीं आया। सी ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट जो है, कभी भी आप उठाओ उसके नीचे या कहीं पर भी लिखा एक जगह जरूर होता था, डू नॉट टच द हेड। सबसे पहला सवाल, हेड कहाँ है, हमें कहाँ से समझ में आएगा उस टाइप पे। ठीक है, सी कैसेट के दो रील्स दिख रहे हैं, टेप दिख रही है, प्लास्टिक बॉडी भी दिख रही है, लेकिन ये हेड नाम की चीज कहाँ है? फिर भी वार्निंग को हम पढ़ते थे और बिना समझे सीरियस फेस बना लेते थे। एक वो चीज है ना, एक शौक हमारा जो एडल्टिंग का रहता है, जैसे हम हमेशा ही बोलते हैं 90s में, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, और वो ये है कि पता नहीं whether you know it or not, so cassette player का जो हेड है वो उसका हेड अंदर प्लेयर के अंदर होता था। जब कैसेट प्ले होती थी तो उसकी मैग्नेटिक टेप प्लेयर के रिकॉर्डिंग या प्लेबैक हेड के सामने से गुजरती थी। सो अगर टेप को उंगली से टच कर दिया तो उस पर ऑयल या डस्ट या फिंगरप्रिंट्स आ सकते थे, जिससे साउंड क्वालिटी खराब हो सकती थी। इसीलिए वार्निंग एक्चुअली टेप को अननेसेसरली टच ना करने के लिए होती थी, लेकिन बचपन में हमें लगता था शायद कैसेट के अंदर कोई सीक्रेट हेड छुपा हुआ है। वार्निंग पढ़ने के बाद भी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती थी कि कैसेट को उल्टा पुल्टा करके कभी कभी देखते थे, रील्स को घुमाते थे, पेंसिल से रिवाइंड करना, इट्स सच अ 90s थिंग टू डू, सब कुछ अलाउड था, बस हेड को टच करना नहीं अलाउड था, जो हमें मिलता ही नहीं था। 90s की टेक्नोलॉजी भी कितनी इंटरेस्टिंग थी ना। इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में, समझ आधी हमें, कॉन्फिडेंस फुल ऑन, और इसीलिए उस जमाने के गैजेट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप भी काफी अलग सा था। हम उन्हें सिर्फ यूज नहीं करते थे, उन्हें ऑब्जर्व भी बहुत किया करते थे। आज भी कोई पुरानी ऑडियो कैसेट हाथ में आ जाए तो अगर आपके कभी हाथ में लगे तो या यू कैन एक्चुअली रीड दैट। इनफैक्ट वीडियो कैसेट्स में भी होता था, डू नॉट टच द हेड। अच्छा, आर यू श्योर?

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
2: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का?

क्या कुछ नहीं किया हुआ है हमने 90s में. मतलब हमारी इतनी फीलिंग बेस्ड लाइफ थी ना 90s में कि आई थिंक दैट्स व्हाई दिस फीलिंग्स आर सो स्ट्रॉन्ग. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s में एक स्टेप आप सुन रहे हो. मैं हूं अंतरा आपके साथ. सो टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, इट फेल्ट मैजिकल राइट. एंड 90s के बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ स्कूल लैब में नहीं, ड्रॉइंग रूम में बैठ के किया करते थे. उसका सबसे वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट विच आई कैन रिमेम्बर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टीवी बंद होने के बाद स्क्रीन पे हाथ रखना. याद आया, प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है, घर वालों ने टीवी ऑफ कर दिया, हम सीधा स्क्रीन के जो है पास पहुंच जाते थे, एक हाथ धीरे से स्क्रीन पे, और फिर वो हल्की सी वाली स्टैटिक सी जो फीलिंग, बस उस मोमेंट पे लगता था टीवी के अंदर सच में कोई मैजिक है. सो वो पुराने सीआरटी टेलीविजन यानी कि कैथोड रे ट्यूब वाले जो टेलीविजन स्क्रीन के अंदर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स यूज करके पिक्चर बनाते थे पहले के टाइम पे, 90s की मैं बात कर रही हूँ. इस प्रोसेस की वजह से स्क्रीन के सरफेस पर थोड़ी सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट हो जाया करती थी. इसीलिए टीवी बंद होने के तुरंत बाद जब हम स्क्रीन को टच करते थे तो वो हल्की सी एक इलेक्ट्रिक फजी फीलिंग जो है वो महसूस होती थी. मतलब वो कोई इल्यूजन नहीं था, साइंस था. एंड हम सबने ये किया हुआ है कभी ना कभी, लेकिन किसी ने कभी ये रीजन नहीं पूछा. बस टच करके स्माइल करते थे कि तूने वो देखा है, टच करके एकदम झन से एकदम फीलिंग आती है. ऐसा हम दोस्तों के साथ फिर डिस्कस भी करते थे एंड फिर हमारे दोस्त या फिर हम घर आके उसको ट्राई किया करते थे कि हमारे टीवी पे भी ऐसा होता है. कभी स्क्रीन पे बाल चिपका कर देखते थे, कभी उंगली घुमा कर देखते थे. 90s में टेक्नोलॉजी मिस्टीरियस जरूर लगती थी कि टीवी कैसे चल रहा है, कैसेट कैसे गा रही है, रिमोट सिग्नल कैसे दे रहा है, सब कुछ थोड़ा सा नहीं काफी सा मैजिकल लगता था. आज तो भाई टच स्क्रीन्स है, OLED डिस्प्लेज है, स्मार्ट टीवीज है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उनमें वो स्टैटिक वाला सरप्राइज नहीं है, वो क्यूरियोसिटी नहीं है, है ना. 90s के गैजेट्स मशीन कम, मैजिक बॉक्सेस इसीलिए ज्यादा लगा करते थे और इसीलिए इस शो की हर बात भी एक जादू से कम नहीं लगती है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चलिए जादुई गाने कुछ 90s वाले हो जाए

0: They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha. The newest chapter in the YRF Spy Universe.

0: पर इस बार
1: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
2: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
2: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
5: एक्साइटेड?
6: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: डूड, ये जैकेट कंधे पे रखने का स्वैग तो भाई आज भी बहुत ही शानदार लगता है मुझे। इट गिव्स यू सच अ कूल वाइब, आई टेल यू, बट इट्स सच अ 90s थिंग टू डू एज वेल। रेडियो मस्ती 97.7 लाइव पर अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई स्टाइल ऑलवेज बिफोर कम्फर्ट, ये एटलीस्ट 90s के बॉलीवुड में लगता तो था ही, राइट? भाई 90s के बॉलीवुड हीरोज के पास ये एक ऐसी फैशन जो है, एक हैक ट्रिक जो भी कह लो, जो रियल लाइफ में शायद किसी को इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन स्क्रीन पे क्या स्टाइल लगता था यार। सी, हीरो चल रहा है और उसका जैकेट पहना हुआ नहीं है, बस एक कंधे पे लटका हुआ है। वो स्लो मोशन वॉक, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक, हीरो की आंखों में कॉन्फिडेंस, जैकेट बस एक शोल्डर पे बैलेंस करके चल रही है। ऐसा लगता था ग्रेविटी भी हीरो की फैन है। सो 90s के कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ना कई बार जानबूझकर जैकेट को सिर्फ एक कंधे पर ड्रेप किया करते थे। रीजन बीइंग, जब एक्टर चलता था तो जैकेट नेचुरली मूव करती थी, इस मूवमेंट से वॉकिंग शॉट और भी डायनामिक लगता था। स्क्रीन पर पर्सनालिटी और एटीट्यूड इंस्टेंटली हाईलाइट हो जाते थे। मतलब स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं था, कपड़े कैसे कैरी किया जाते हैं उसमें था। एंड द फनी पार्ट इज, हम सब ने कभी ना कभी ट्राई किया हुआ, मैं तो आज भी करती हूँ। आई जस्ट लव दैट स्टाइल, आई फाइंड इट रियली रियली कूल। स्कूल से आते वक्त है ना, या कॉलोनी में वॉक करते वक्त जैकेट या स्वेटर कंधे पे डाल लिया, दो मिनट बाद ढप वो नीचे गिर जाता था, क्योंकि असली हीरो हम में डिफरेंस तो था ही ना। 90s का फैशन वैसे भी कॉन्फिडेंस पे ज्यादा चलता था। डेनिम जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, प्रिंटेड शर्ट्स, उन्हें कैरी करने का अपना ही एक अंदाज, कंफर्ट बाद में लेकिन एंट्री पहले, वो भी हीरो माफिक। आजकल फैशन ट्रेंड्स हर दिन मुझे बदलते हुए नजर आते हैं। तब एक हीरो का स्टाइल, एक हीरोइन का स्टाइल पूरे साल कॉपी होता था। एक कंधे पे लटकी हुई जैकेट भी फैशन स्टेटमेंट बन जाती थी। आई मीन इट वॉज जस्ट नॉट द डायलॉग्स और द स्क्रिप्ट और एनी थिंग, उनकी चाल भी फैशन का हिस्सा थी यार। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 90s, कम ऑन, ये तो बिल्कुल फील देने वाला 90s है। यू सी, नाउडेज पोल्का डॉट इज सो मच इन फैशन अगेन, बट इट इज नॉट आज का थिंग, राइट? पोल्का डॉट्स हैव बीन देयर फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी। पोल्का डॉट वाली ड्रेसेस याद है आपको 90s में? कितनी हीरोइंस ने पहनी हुई है। आई मीन नॉट ओनली ड्रेसेस, ड्रेसेस से मैच करते हुए उनके हेडबैंड भी, इफ यू रिमेम्बर, आया ना याद? उनके एकदम करिश्मा कपूर, रवीना टंडन के एकदम बड़े बड़े एकदम ऐसे पुफ वाले बाल, और उसमें लगे हुए पोल्का डॉट वाले स्कार्फ। आई नो यू नो, है ना, गाने सुनते हैं, चलो।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Are you ready? Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: कसर से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पर लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: I love you, रसना।
2: रसना से तो जुड़ी इतनी प्यारी याद है ना मेरी कि मैं क्या ही बताऊँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो। नाउ रसना वन ऑफ माय फेवरेट, ऑरेंज रसना तो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट थी। हर बर्थडे पर जो है ये एक चीज, कुछ हो ना हो लेकिन रसना जरूर बनाया जाता था, बिकॉज इट यूज टू बी माई फेवरेट। एंड मी एंड माई डैड वी यूज टू मेक दिस रसना टुगेदर, बड़े से एक स्टील की डेगची में जो है हम लोग इसको बनाया करते थे और फिर बॉटल में भर भर के उसको रखा करते थे। आई नो हमें वैसे भी 90s के बच्चों को ना इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का थोड़ा कम शौक था, नहीं लगता नहीं है, ये काफी यूनिक क्वालिटी थी, एक्सपेरिमेंट करने का शौक काफी था। और इसका एग्जांपल भी रसना ये बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। सी किचन में अगर जैसे मम्मी रसना बना रही है तो पहला सवाल, टेस्ट कर सकते हैं लेकिन ग्लास का नहीं चाहिए, सीधा पाउडर का। Yes, that is right. स्पून से थोड़ा सा पाउडर निकाला, उंगली पे रखा और सीधा उसको चख लिया। अगला एक्सप्रेशन, पहले तो वाह, फिर होता है कितना खट्टा है, और फिर भी दो मिनट बाद एक बार और हो जाए, जैसे पहली बार कुछ अलग ही रिजल्ट आने वाला हो। नाउ पैकेट पे क्लियरली लिखा होता था कि पानी में इसको मिलाओ, शुगर डालो, मिक्स करो, तब ड्रिंक बनती थी, लेकिन हम मैनुअल बाद में पढ़ेंगे, क्यूरियोसिटी जो है पहले। और जब मम्मी देख लेती थी तो डायलॉग आता था कि इसको ऐसे नहीं खाना है ना।

गला खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा खट्टा एंड ऑल दोस थिंग्स. लेकिन बचपन की क्यूरियोसिटी को लेक्चर कब रोक पाया है. फिर भी वो बड़ा सा जग आएगा, फिर वो एक स्पून से उसको ऐसे गोल गोल घुमाना और फ्रिज में ठंडा होने का वेट. वो वेट भी कितना मुश्किल हुआ करता था ना, समर का मतलब ही था यार, रसना, रूह अफजा, नींबू पानी, पूरा घर एक साथ बैठकर ठंडा ठंडा उस ड्रिंक को पीना. इतने सारे आजकल जो है इंस्टेंट जूस के ऑप्शंस एंड ये सारी चीजें हैं. तब ड्रिंक बनाना भी फैमिली एक्टिविटी होती थी और उस एक्टिविटी का अनऑफिशियल फर्स्ट स्टेप पाउडर टेस्ट टेस्ट. ऐसी ही याद है बिल्कुल ताजा करती हुई मैं, लेकिन थोड़ी देर और यहाँ पे रहती हुई मैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट online.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
0: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार, रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: हाँ जी, बस इसी बात के साथ साथ अब जाने की बारी है। आई नो वी नेवर लाइक दिस मोमेंट बिकॉज वी डोंट वांट टू कम आउट 90s की दुनिया से। रेडियो मस्ती पर वो समय लाइव ऑन ट्रैप के साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। सो वेल, कितना खूबसूरत सफर, एक बार पीछे मुड़ के रिकैप हो जाए एकदम 90s स्टाइल में। 90s में भी तो रिकैप होता था ना। सो भाई, आज कितनी सारी चीज़ें थी कि वो आवाज़ों के बारे में हमने बात की जो सिर्फ 90s को बिलोंग करती थी, वो छोटी सी पेंसिल जिसके पेन का कैप लगाकर हम उसकी लाइफ बड़ा दिया करते थे, वो साइकिल की चेन जो बीच रास्ते पे उतर जाती थी, वो ग्रीस लगे हुए हमारे हाथ जो हम प्राउडली दिखाते थे, वो फाउंटेन पेन की ब्लू इंक और जो उंगलियों पे लगा कर जो है बता देती थी कि आज स्कूल में बहुत सारी लिखाई हुई है, वो बॉलीवुड की हीरोइंस जिनकी चूड़ियों की खनक एक्टिंग करती थी, वो नटराज की पेंसिल जिसके हाथ में पकड़ते ही लगता था कि आज हैंड राइटिंग जरूर अच्छी होगी, वो एक्लेयर्स जिसका रैपर ही पहला चैलेंज होता था, वो ऑडियो कैसेट जिस पर लिखा होता था डू नॉट टच हेड, वो सीआरटी की टीवी स्क्रीन जिसे टच करके लगता था टेक्नोलॉजी में सच में जादू बसा है और वो जैकेट का हीरो का एकदम एक कंधे पे लटका कर स्टाइल मारना, एंड वो रसना जिसका पाउडर ड्रिंक बनने से पहले ही आधा टेस्ट हो जाता था। एक कंक्लूजन अगर आज के एपिसोड का निकालना हो तो वो शायद ये होगा कि 90s में परफेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं था, पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट था। हम हर चीज़ में इन्वॉल्व होते थे, बुक कवर करने में, रसना बनाने में, साइकिल ठीक करने में, कसेट संभालने में, टीवी देखने में और बॉलीवुड के हीरोज़ को कॉपी करने में, हीरोइंस को इन केस ऑफ गर्ल्स। आज बहुत सी चीज़ें आसान हो गई है लेकिन शायद इसी आसानी में वो छोटी छोटी कहानियाँ कहीं पीछे रह गई हैं। 90s ने हमें एक बहुत ही प्यारी बात सिखाई, दैट खुशियाँ रेडीमेड नहीं मिलती, उन्हें मिलकर बनाया जाता है। इसीलिए जब भी कोई पुराना गाना 90s का बजता है, कोई कैसेट दिखती है या रसना का पैकेट नज़र आ जाता है, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं देखते, हम अपना बचपन उसमें देख कर जी भी लेते हैं। मैं हूँ अंतरा यहाँ पर आपके साथ, आज के लिए आपसे लेती हूँ इजाजत, अगली बार वापस मिलेंगे और बातें करेंगे और यादों के इस गलियारों को फिर एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ खोलेंगे। तब तक के लिए यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Masti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Masti Top 20, only on Radio Masti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ. भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर. मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे. फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: डांस बसंती
1: जोश में रहो। Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे च...

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन

Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: लड़के।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
4: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
2: ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
5: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
4: Time to raise the bar.
5: Ramba.
4: Mosty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style.
6: Renuka.
3: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
7: Josh mein raho.
8: Mere Karan Arjun aayenge.
3: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमे जते.
0: नदी जमे जते. सो सेक्सी.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
5: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
6: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
7: रात।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
1: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: और आप में से जितने लोगों ने कहा अरे गलत ऐड चल गई, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी गलत ऐड नहीं चली है, बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं आप. दिस इज मसी टॉप चार्ट्स विद रेणुका. अरे आज के दिन, हाँ व्हाई नॉट, आज ही के दिन बिल्कुल. तो चलिए शुरुआत करेंगे. जी हाँ, क्यों हमने आज के दिन कर दिया? Well, that's because Friday evenings को आप में से आधे लोग तो पार्टी पे जा रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर काम करती रहती हूँ. तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि अकेले मैं काम नहीं करूंगी, आप सब मेरे साथ में रहेंगे, और अगर साथ में नहीं रहेंगे तो ठीक है फिर मैं भी जा रही हूँ. और उसी के साथ में हमने डिसीजन लिया कि अब से हम फ्राइडे को नहीं थर्सडे को आएंगे आपका साथ देने के लिए. आफ्टर ऑल थर्सडे इवनिंग इज ऑलरेडी द बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड, इजंट इट? प्रैक्टिस करने लग जाते हो कि इस वीकेंड पे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं. सो वेल, जस्ट कीपिंग दैट इन माइंड गाइज, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड इट इज मस्ती टॉप चार्ट्स. और मस्ती टॉप चार्ट्स में हमेशा की तरह गाने एब्सोल्युटली फ्रेश, और गाने जो है ना ऊपर नीचे एक दूसरे को धमकियां देते हुए निकलते चले आ रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ते चले आ रहे हैं. है ना नया गाना? जी हाँ बिल्कुल, नंबर 20 पर. पिछली बार जो नंबर 20 पर गाना था उसको टोटली हमारी प्लेलिस्ट से बाहर धकेलता हुआ, धक्के मारता हुआ ये वाला गाना घुस बैठा है. एंड आई एम क्वाइट श्योर इसके म्यूजिक को देखते हुए दैट इट विल रीच टॉप चार्ट्स में और आगे.
2: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल.
1: धमाल 4 के साउंडट्रैक से शुरुआत करते हैं गाना नंबर 20. इट इज मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका. स्टे ट्यून्ड गाइस, राइट फ्रॉम नाउ टिल 8 इन द इवनिंग रहूंगी मैं आपके बिल्कुल साथ. द नंबर इज 9151 8963. कॉल मी, टेक्स्ट मी, टॉक टू मी, टेल मी आज का नंबर 1 कौन सा होना चाहिए.
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20.

और जैसा कि मैंने आपको कहा, धमाल 4 के साउंडट्रैक से आप सुन रहे हैं गाना हेवली इंस्पायर्ड बाय द सिंगर संजू राठौर का वायरल हिट गुलाबी साड़ी, जिसमें हमने देखा रितेश देशमुख और अंजलि आनंद को। दिस इज फ्रॉम धमाल 4।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

भाई हर किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से। वेल द लेटेस्ट टू जॉइन आवर शो राइट नाउ इज आरती जी, माय एंजल विदाउट विंग्स, ऐसे सेव किया हुआ है अंतरा जी ने इनका नाम हमारे डेटाबेस में। रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेनुका विद यू एंड ऑफ कोर्स इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स।

0: प्यार। भाई क्या गाना है, जाबाज के गाने ना एब्सोल्युटली सुनते ही बनते हैं। एनी टाइम ऑफ द ईयर, एनी टाइम एनी डे सुन सकते हैं ये वाले गाने रेडियो मस्ती 24/7 पर। यू आर विद रेनुका। जी हाँ बिल्कुल। और अगला कौन सा गाना होना चाहिए? वेल मस्ती टॉप चार्ट्स है तो ऑब्वियस है ना कि अगला गाना मस्ती टॉप चार्ट से ही होगा। हेलो हेलो, कहाँ हो? हेलो एंड हेलो। ऑलराइट, सो वेल अभी ब्रेक से पहले, ब्रेक तो क्या ही था खैर हमारा, लेकिन इस पुराने गाने से पहले वी ऑलरेडी स्टार्टेड अ शो एंड आई सेड वेल द शो इज नाउ मूव फ्रॉम फ्राइडेज टू थर्सडेज। वेल बिकॉज फ्राइडे को मैं देख रही थी कि अपार्ट फ्रॉम मेरी अपनी टीम बड़े सारे आप लोग भी गायब हो रहे थे। जल्दी जल्दी मुझे 6:30-7 बजे या तो कोई हेलो बोलने आता था या फिर कोई बाय बाय करके चला जाता था और मुझे इतना अकेलापन लगना शुरू हो चुका था दैट आई सेड लुक यू नो व्हाट गाइस आई एम गोना मूव दिस शो टू व्हाट It used to be many, many years back. जी हाँ, कोविड के टाइम पे I remember I used to host Masti Top Charts and it used to happen on Thursdays. तो I was really missing that vibe and that's why I thought, चलो भाई छोड़ो गोली मारो दुनिया को और वापस ले आओ थर्सडे शाम को। तो हमारा गाना नंबर 19 कौन सा है? सरप्राइज सरप्राइज, गाना नंबर 20 भी धमाल 4 के साउंडट्रैक से और 19 भी फॉलोड बाय गाना नंबर 18। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये गाना जाने वाला है जल्दी ही। आफ्टर ऑल कब तक वेलकम करते रहेंगे ना। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती का धमाल। जी हाँ, एंड दैट इज मस्ती टॉप चार्ट्स। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर एंड आफ्टर यू गाइस कम बैक आई एम गोना टेल यू रणबीर कपूर के नखरे। जी हाँ, या मे बी नो नखरे एंड दैट इज वाई सरप्राइज सरप्राइज। यस और नो, व्हाट्स योर टेक, नखरे वाला है या नहीं है? क्या सुना है, क्या पढ़ा है, मुझे बताओ। 9151896 एंड आई विल टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक वेरी क्विकली टू टेल यू है या नहीं है। डू यू लाइक him by the way?
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song number 19.
3: Mm-hmm.

0: And you guessed it right, that is Guru Randhawa on the vocals, guys. This is Dhamaal 4 ke soundtrack se gaana number 19 right now playing on Masti Top Charts.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: Trending song number 18.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: भाई अगर वेलकम की बात करनी है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी दैट यू आर वेलकम टू वॉच अल्फा. जी हाँ, आलिया भट्ट की ये फिल्म रिलीज होने वाली है कल ही के दिन एंड इट्स अ जीवी एक्सक्लूसिव. सो मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच इट जल्दी जल्दी. ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग अमेजिंग फिल्म इट सीम्स लाइक. तो भाई जाके जरूर देखना है और जो सबसे जल्दी देखेगा उसको वापस आके मुझे अपना रिव्यू देना है. राइट, दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20. तो पिछले दो गानों से पहले well, सबसे पहले तो एक बार और आपका स्वागत रेडियो मसी 24/7 पर. दिस इज मसी टॉप चार्ट्स जो कि शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे. जी हाँ, पॉपुलर डिमांड आपकी भी और मेरी भी कहीं ना कहीं. बट हाँ, हमारे प्रोग्राम में मैनेजर ने कहा ठीक है, ग्रांटेड. क्यों? क्योंकि फ्राइडे सुबह भी मैं बोल रही हूँ और फ्राइडे शाम भी मैं बोल रही हूँ. तो मैंने कहा भाई साहब, दो दो बार नहीं बोला जाता मुझसे इतना ज्यादा. इमेजिन मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है. वेल, मस्ट बी एज, मस्ट बी एज, नथिंग एल्स. बट ऑन रेडियो मसी गाइस, जस्ट अ वाइल बैक आई टोल्ड यू दैट रणबीर कपूर और उसके नखरे तो बिल्कुल नहीं है. दैट इज वॉट टोटली मेक्स मी सो हैप्पी कि भाई इस इंसान के अंदर देर इज नो एंटराज. कैन यू इमेजिन, जब ये शूटिंग वूटिंग के लिए जाते हैं तो ये पूरे के पूरे सेट के जितने भी लोग हैं उनके नंबर्स अपने पास रखते हैं. एंड इट देर इज नो मैनेजर, देर इज नो मिडल मैन, ही रीचेज आउट टू एवरी वन, बिलीव इट और नॉट, एब्सोल्यूटली डायरेक्ट. कितनी प्यारी सी ये बात है ना, क्योंकि ना ही सिर्फ पैसे बचते हैं लेकिन साथ ही साथ में नखरे ना सहने की वजह से टाइम भी बचता है पूरे के पूरे क्रू का. अभी तो बताया रणबीर कपूर है वो. और ये है गाना नंबर 17. क्या है, कौन है, सुनते तो हो नहीं और उसके बाद सवाल पूछते हो. रेडियो मस्ती 24/7 पर अपना नेक्स्ट इज द मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर. थोड़ा सा पुराना गाना सुनेंगे, राजू बन गया जेंटलमैन, एंड देन ऑफ कोर्स राइट आफ्टर दैट वी विल लिसन टू गाना नंबर 17. साथ साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं.
0: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: They were not chosen.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: Trending song number 17.

0: to tell you about this film last week when we were on Masti Top Charts. This is Renuka with you, Radio Masti 24/7. And of course, you guessed it right. Masti Top Charts, Friday se lekar aaj Thursday ko. Aakhir kyun, kyun, kyun? From rocking the charts to ruling the weekly countdown. Join us on Masti Top 20. Alright, so josh mein rehne ke liye bilkul hum yahan hai na. इनफैक्ट मैं अभी बैठे बैठे इतना ज्यादा मेरे हाथ पैर हिलते रहते हैं कि मैंने सोचा इंस्टाग्राम लाइव करके देखती हूँ कि यार चल भी रहा है सब कुछ, की ठीक ठाक क्या चल रहा है. तो वहां पर बस एक सुमित्रा ने ज्वाइन किया और मैंने कहा भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़े दिनों से आपका तो नाम मैंने कभी देखा ही नहीं है. सो शी जस्ट सेड अ लिटिल बिट फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर, एक्सचेंज्ड वर्ड्स विद हर, एंड देन आई सेड ओके बाय बाय, बैक टू द एयरवेव्स. जी हाँ, आप जानते हैं एक बड़ी ताज़ा खबर कुछ ऐसी आई है कि 52 साल, जी हाँ 52 ईयर्स के बाद में सलमान खान हैज decided to move from Galaxy Apartments in Bandra. आप सोचिए 5 decades, जी हाँ 50 साल से भी ज्यादा ये घर उनका एड्रेस रहा है. एंड डिस्पाइट बींग वट एवर ही हैज अचीव्ड इन द लास्ट 50 ईयर्स, दिस गाय कंटिन्यू टू लिव इन द 1 BHK इन Bandra Galaxy Apartments. क्यों? गान नंबर 16 कमिंग अप नेक्स्ट. आपने ये फिल्म देखी कि नहीं देखी? आई गई इस पूरी की पूरी सीरीज का ना, ये जिनी वेड्स सनी का आने का भी पता नहीं लगता और जाने का भी पता नहीं लगता. But on Radio Masti 24/7 is about 5:38 by the studio clocks. यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि भाई खान फैमिली जो कि सलमान खान के सुपरस्टारडम के पीछे हमेशा रहता है, the landmark that millions of fans have visited just to catch a glimpse of सलमान खान, जी हाँ अपनी बालकनी से, अब वो finally after 52 years he's moving out of his iconic apartment जहाँ पर उन्होंने मतलब कितने ही दिन कितनी ही रातें बिताई है, पूरी पूरी अपनी चाइल्डहुड बिताई है. So he's getting very emotional and I understand the reason for that is his security. जी हाँ, जैसे कि हम जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि हमेशा से हमारे सलमान भाई के पीछे कुछ ना कुछ चल ही रहा है. सो बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द थ्रेट टू हिज लाइफ, वेल ही हैज बीन आस्क्ड टू मूव इनटू अ मोर सिक्योर प्लेस. तो भाई उसी के साथ में नहीं दिखेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट में अब ये 55. दिस इज ही बिगैन, यू नो जो सलीम खान है जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो ही स्टार्टेड 55 रुपीज अ मंथ शेयर्ड रूम और उसके बाद 2 फ्लोर्स गैलेक्सी अपार्टमेंट के खरीदने के बाद में आज ये सारे के सारे अपने इस मुकाम पे पहुंचे हैं. व्हाट एन अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी, व्हाट अ सक्सेस स्टोरी दैट इज. अप नेक्स्ट गाना नंबर 16.
1: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर. चेक इट आउट. Trending song number 16.

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
4: बताऊंगी आपको शर्वरी के बारे में भी, क्योंकि लग रहा है कि आजकल जहां देखो हर फिल्म में शर्वरी ही शर्वरी है. ऐसे कौन से बेर चख लिए इस शर्वरी ने कि वो बस हर जगह राम राम यही दिखती हैं. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, आई गॉट टेल यू अबाउट अल्फा व्हिच इज रिलीजिंग इन सिंगापुर. जी हाँ, कल ही के दिन में NC-16 है इसकी रेटिंग. एंड दिस इज अ नैरेटिव अराउंड अल्फा, मतलब कि ऐसी लड़की, ऐसी फीमेल लेड फन पॉपकॉर्न एक्शन स्पेक्टिकल YRF के स्पाई यूनिफॉर्म यूनिवर्स से सबसे पहले आप देखने वाले हैं इस फ्रेंचाइज का पहला फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स. जी हाँ, एब्सोल्युटली एक ऐसा थ्रिलर जिसके बस अब रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं. सो वेल, व्हाट आई डू वांट टू टेल यू इज दैट आलिया भट्ट इज इन एन अमेजिंग रोल इन दिस फिल्म. एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है पूरी दुनिया में जहां जहां रिलीज हो रही है ये फिल्म. अल्फा ने दिखाए हैं बहुत ही इनकरेजिंग से मोमेंटम को प्री सेल्स में. जी हाँ, और इंडस्ट्री ने ट्रैक किया है कि ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एडवांस बुकिंग्स हो चुकी हैं. वेल, सिंगापुर में क्या हाल है? वेल, आई कैन टेल यू इट इज अ GV एक्सक्लूसिव फिल्म गाइस, सो गो एंड वॉच इट दिस वीकेंड. एंड ऑफ कोर्स अगली बात ये कि जब आप देख लेंगे इस फिल्म को, आप वो वाली टिकट्स हमको भेज सकते हैं. एंड क्या पता कि आप उस लकी विनर में से हो जिसके पैसे हम रीइंबर्स कर दें, तो फ्री हो जाएगी आपकी ये फिल्म. आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा. द फर्स्ट 10 टिकट्स टू सेंड देयर स्टब्स टू अस विल गेट बिल्कुल पूरे के पूरे पैसे वसूल एंड रीइंबर्स. सो वॉच अल्फा एंड लेट अस नो कैसी लगी आपको. फिलहाल के लिए अगला गाना कमिंग अप इज अ ब्यूटीफुल फ्लैशबैक सॉन्ग ऑन मस्ती 24/7 और चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स.
5: Bollywood Flashback.

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: एब्सोल्युटली लायन सिटी चैलेंज में तो आप हमको करते ही रहते हैं टेक्स्ट, लेकिन फिलहाल के लिए इतने लोग नहीं है जिनको सिलेक्ट किया गया है. क्यों? वेल, बिकॉज आई थिंक आप लोग ना थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हैं. बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 ये वाला शो लायन सिटी चैलेंज के बारे में नहीं है. इट इज अबाउट मस्ती टॉप चार्ट्स.
4: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20.
3: Musti Top 20 तो है एक साइड पर, लेकिन टॉप के लोगों की बात करते हैं हम दूसरी साइड पर. और इस समय आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट धुरंधर. जी हाँ, एब्सोल्युटली धुरंधर ऑल द वे. इमेजिन हमजा अली, जी हाँ उसको बोले कोई हमजा सान. जस्ट थिंक अबाउट इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीज ऑफ धुरंधर इन जापान. जी हाँ, सोचिए सारी की सारी फिल्म को डब किया गया जापानीज में, तो हमजा सान ही हुए ना. तो हमजा सान जो है उन्होंने एक मैसेज दिया है जापानीज लोगों के नाम. जी हाँ, धुरंधर की जापान की जो रिलीज है, इट कम्स एट अ टाइम जब भारत में रणवीर सिंह ऑलरेडी हेडलाइंस बना रहे हैं फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जिट फ्रॉम डॉन 3. जी हाँ, बहुत सारे रिपोर्ट्स के बाद में कुछ ऐसा पता लगा कि जो रणवीर सिंह है वो इस समय निकले हैं उस फिल्म से बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस विद द मेकर्स. लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रणवीर काफी दुखी थे विद द रिपीटेड डिलेज इन प्रोडक्शन एंड द एब्सेंस ऑफ अ लॉक्ड फाइनल स्क्रिप्ट. तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि मैं धुरंधर के बाद एक ऐसी पीक पर पहुंच चुका हूं जहां कोई खान कभी नहीं पहुंच पाए हैं, एंड आई डोंट वांट टू लूज इट ओवर वन फिल्म. ऑलराइट, एंड आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू, इजंट इट? लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें फिलहाल क्या ही पता है. जब शुरुआत में लग रहा था कि कुछ कास्टिंग चेंज और बिकॉज धुरंधर की वजह से रणवीर सिंह का दिमाग काफी ऊंचा हो गया, ही डिसाइडेड मैं ये छोटे मोटे डॉन 3 टाइप के रोल नहीं करूंगा. लेकिन पता कुछ ऐसा लगा कि ही जस्ट वॉक्ड आउट ऑफ इट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ लॉस टू द एक्सएल एंटरटेनमेंट, व्हिच इज हमारे फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी. 45 करोड़, जी हाँ 45 करोड़ रुपीज इन कॉम्पनसेशन डिमांड की गई थी. एंड द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई, उन्होंने इशू किया नॉन कोऑपरेशन का डायरेक्टिव अगेंस्ट द एक्टर, जो कि इस समय रिवोक हो चुका है. तो वेल, बाल भी बांका नहीं कर पाया कोई भी. लेकिन पता कुछ ऐसा लगा है कि अब जापानीज रिलीज, जी हाँ एब्सोल्युटली अराउंड द कॉर्नर. और हमारे जो धुरंधर हैं उन्होंने जापान में सभी लोगों को कहा है अ वार्म हेलो एवरीवन. जी हाँ, धुरंधर रिलीज हो रही है इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ में, ड्रामा इंटेंसिटी ये वो बहुत कुछ. और अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं चाहता हूं आप सभी एंजॉय करें द बिगेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम्स ऑन द बिग स्क्रीन. लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू एट द मूवीज. हम तो आपको सी यू करेंगे अगले हफ्ते. फिलहाल के लिए फिल्म में तो मैं नहीं जा पा रही हूँ ना. And that's a beautiful track which is now going to play on Gaana Number 15. This is Rish and साथ में अलका याग्निक. आप जानते हैं अलका याग्निक की आखिरी गाना था जो कि उन्होंने रिकॉर्ड किया था बिफोर शी फेल इल. एंड ऑफ कोर्स आज के दिन हम कह सकते हैं शी इज द प्राउड रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री. लेकिन फिलहाल के लिए ये गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7. सी यू नेक्स्ट आवर.
2: It is on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
5: Check it out.
6: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
7: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
8: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है.
9: Time to raise the bar. Ramba. Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style.
10: Renuka.
8: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
11: Josh Mehra.
2: Trending song, number 15.
0: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है। ऐ मेरी प्यारी चलिया।

और सही कहा है किसी ने कि अगर ये गाना पहले रिलीज होता और अलका याग्निक जी अब भी बिल्कुल सही गाने गा रही होती, बिल्कुल ट्रैक पे होती, रिलीजेस कर रही होती, तो शायद इसको इतना सीरियस और इतना सक्सेस ना मिलता। दिस वाज गाना नंबर 16, जी हाँ, ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप ट्यून हैं टू मस्ती टॉप चार्ट्स और मुझसे पूछा जा रहा है कि आज मैं स्टूडियो में क्या कर रही हूँ। बताती हूँ,

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार।
4: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
5: और आपको जोश में रखने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, 6 बजने के उस पर भी मैं हूँ रेनुका आपके साथ। दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स। और जितने लोग अभी ढीले ढाले उठ के जरा ट्यून इन कर रहे हैं अपने रेडियो मसी 24/7 ऐप को, तो वेल लेट मी टेल यू गाइस कि आप बहुत लेट हैं। जी हाँ, आप लेट तो हैं ही, क्योंकि शाम के 5 बजे से यहाँ पर काफी गपशप शुरू हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ में आप इसलिए भी लेट हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि हमारा शो आज के दिन शिफ्ट हो चुका है। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट वीक गाइस दैट द मसी टॉप चार्ट्स हैव बीन मूव्ड फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे ओनली बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड। As I'm saying, and popular demand ना ही सिर्फ आप लोगों की बट ऑल्सो मेरी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे सारे के सारे लोग पार्टियां करने जा रहे हैं और मैं ही यहाँ पर स्टूडियो पर बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा वाई शुड आई, मैं तो बॉस हूँ ना, मेरे को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि सारे टीम छुट्टियों पर जा रहा है, अपनी ऐशे कर रहे हैं। और इस सारी की सारी सिचुएशन में हमने लॉटरी निकाली, हमने लॉटरी मतलब हमने चिट्स निकाली और लॉटरी लग गई पुअर मुग्धा की। और मुग्धा जी बिल्कुल फ्राइडे को पेश हो जाएंगी। गाना है तू ही दिस दा। जी हाँ, गाना नंबर 14 था ये पिछले हफ्ते और आज भी 14 नंबर पर टिका हुआ है। एंड फॉलोड बाय अनदर गाना विच इज द सॉन्ग विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट वीक, अ वेरी वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यून, इजंट इट? थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न फ्लेवर इसमें। दिस इज कॉल्ड या बाबा संजॉय ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि भाई शर्वरी जो हर जगह में नजर आ रही हैं, तो अभी भी फिलहाल इस टाइम आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, एक्सेप्ट दिस दैट शी इज ओनली 29 ईयर्स ऑफ एज। आपने फिल्म देखी है, मैं वापस आऊंगा, आपने फिल्म देखी है लव रंजन या फिर आपने देखी होगी बंटी और बबली 2। जी हाँ, जहां पर उनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू। अब कुछ याद आया, आई क्वाइट लाइक हर एक्चुअली, शर्वरी वाघ। बस इसके बारे में आके बताऊंगी इन सम टाइम, फिलहाल के लिए सुनते हैं हमारा अगला गाना नंबर 14 व्हिच इज भूत बंगला के साउंडट्रैक से।
6: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट। ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14।

0: दिस जी हाँ, भूत बंगला के साउंड ट्रैक से आप ये वाला गाना सुन रहे हैं इस टाइम। और आप जानते हैं कि इस गाने में दोनों ही द मेल वॉइस एज वेल एज द फीमेल वॉइस दोनों को ही काफी इक्वल रियल एस्टेट मिला है। जी हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें वॉइसेस हैं अरिजीत सिंह की और साथ में निकिता गांधी की। और निकिता गांधी ने हाल ही में ये बात कही कि भाई ये बड़ा ही कैची गाना है, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आजकल हो कुछ ऐसा रहा है कि हर गाने में दोनों ही मेल और फीमेल वॉइस एक्चुअली बराबर में नहीं होते, बट दिस वन आई एक्चुअली एंजॉय इट बिकॉज इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट्स अ वेरी इंडियन एंड इट्स अ वेरी क्यूट बैंटर बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। इट्स Certainly is a beautiful track playing up next on Masti 24/7 top charts is of course gaana number 13. Stay tuned.
1: They were not chosen. They were created.
2: Uski maa ka naam Janki tha. Hum ise Sita bulaenge.
3: Alpha.
1: The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
6: Trending song, number 13.

0: अरे बाप रे, इस गाने का तो वीडियो देखने ही लायक है। जी हाँ बिल्कुल, द बेली डांस एंड द एरोबिक डांस दैट नोरा फतेही इज एब्सोल्युटली फेमस फॉर। शी हैज शोन द मूव्स इन दिस गाना एंड ऑफ कोर्स द सेम टाइम यू गॉट टू वॉच आउट फॉर द वोकल्स गाइस। दिस इज एन अमेजिंग ट्रैक इंडीड। रेडियो मस्ती 24/7 जिसे कहते हैं ना पार्टी एंथम, वही बनता जा रहा है ये वाला गाना या बाबा। और संजॉय का ये टाइटल, ये ट्रैक है, टोटल सिंगल रिलीज है। जी हाँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फिल्म बट जल्दी ही बन जाएगा आई एम श्योर। नोरा फतेही के बारे में बात करें तो शी इज 34 ईयर्स ऑफ एज। जी हाँ, द कनेडियन सिंगर डांसर एक्ट्रेस जो कि भारत में आने के बाद ही उन्होंने हिंदी बोलनी सीखी है। बाय द वे शी ऑल्सो वर्कड इन तेलुगु एंड मलयालम सिनेमा। व्हाट एन अमेजिंग डांसर। बाकी एक्टर वैक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। रेडियो मस्ती 24/7 इट्स अबाउट 6:14 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: इट्स टाइम फॉर
1: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Trending song number 12.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: All right, on Radio Masi 24/7, this is Renuka with you. जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे गाना नंबर 12, which was तेरा हो जाऊं है जवानी तो इश्क होना ही था.
3: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: A very average film on the box office, I would say 50 crore kama ke. Ye film kab aayi kab gayi pata bhi nahi laga. Lekin Varun Dhawan and Kriti Sanon, the way they groove to this gana, that video has definitely won many hearts. Radio Masi 24/7 per Masi Top Charts on a Thursday rather than a Friday from here on, guys. Please do take note in your diaries. Well, इतना भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर ये वाला गाना एब्सोल्युटली हंगामा बन चुका था, बिकॉज कृति सानन, वरुण धवन बहुत टाइम के बाद में फन फिल्म इवनिंग के लिए यूनाइट हुए थे एंड दे लेफ्ट फैंस एब्सोल्युटली एक्साइटेड जब उन दोनों ने इस गाने पे डांस किया. जी हाँ, वायरल हो गया ये वाला क्लिप एंड द फैंस वर रिमाइंडेड ऑफ देयर केमिस्ट्री एंड देयर बॉन्ड. और उसी के बाद में इंस्टाग्राम हैंडल्स पर वरुण और कृति ने दोनों ने वीडियो शेयर किया और साथ ही में दे वर डांसिंग ऑन दिस. नूपुर सानन, स्टैन बेन एंड वरुण शर्मा, जी हाँ, उन्होंने भी ज्वाइन किया तेरा हो जाऊं. व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक इंडीड. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, द नेक्स्ट गाना दैट यू गोना लिसन टू इज गाना नंबर 11. और ये गाना नंबर 11 उस फिल्म का है जो कि हमने सोचा था बहुत कुछ कर जाएगी लेकिन शायद नहीं. Yeah, that is Cocktail 2 ke soundtrack se number 11 coming up next and followed by gana number 10 which is
4: jinni soni lagdi hai mainu kise hor na lagke
2: pati patni aur wo do
4: jinni soni lagdi hai mainu kise.
2: Chaliye sunte hain back to back and I will be back with some lot of masti masala, definitely Bollywood ka masala coming up next on Radio Masti 24/7. 6:23, stay tuned.
1: Hit us on the gram, it's Radio Masti 24/7, and don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Masti 24/7 Singapore.
5: Check it out.
1: Trending song number 11.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Trending song number 10.

0: वो लड़की है यहाँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ।
1: वो लड़की है यहाँ,
0: यही तो मैं कह रही हूँ, वो लड़की है यहाँ और आप हैं कहाँ। इट्स अबाउट 6:33 बाय द स्टूडियो क्लॉक। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स एंड दिस इज योर गर्ल रेनुका। जी हाँ, अभी अभी आप जो गाना सुन रहे थे वो लड़की है कहाँ, और मैंने कहा मैं तो यही हूँ, मैं तो बिल्कुल यहीं पर हूँ। तो फिर दिल चाहता है एक ऐसी फिल्म जिसका इस समय 25वां साल चल रहा है। कैन यू बिलीव इट, टाइम एब्सोल्युटली फ्लाइज गाइस। एंड द एल्बम जो कि गाना आप अभी सुन रहे थे, इसका म्यूजिक सारा का सारा कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने। जी हाँ, जिनको अमर अकबर एंथनी ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। वेल यू नो व्हाट, 10 दिन का ब्रेक लेके ये लोग खंडाला गए थे रितेश सिद्धवानी के घर पे। जी हाँ, दैट इज द प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी। वहां पर इन्होंने सोचा था ये म्यूजिक पे काम वाम करेंगे एंड ऑल दैट। एंड देन उसके बाद इन्होंने 6 गाने पूरे 3.5 दिन में, जी हाँ 3.5 days में दे फिनिश्ड कंपोजिंग ऑल 6 गानाज ऑफ दिस फिल्म दिल चाहता है। एंड रिकॉर्डिंग्स नहीं हुए थे बट कॉम्पोजिशंस बिल्कुल तैयार थे। उसके बाद क्योंकि ये लोग 10 दिन के ब्रेक पे तो गए थे, तो इन्होंने कहा बाकी के 6.5 दिन हमने बैठकर सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स किया, खाया पिया एंड वी जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर। सो इट वॉज बेसिकली द दिल चाहता है वाली कहानी कि बंदे बाहर जा रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, काम भी होता रहेगा, ऐसी क्या बात है। एंड Of course, the only twist was that the title track, Dil Chahta Hai, ji haan, wo wala jo gaana tha, it was composed for a film called Jaane Kyun Log Pyar Karte Hain. Lekin, kehte hain, us time par humne bas socha, isko yahi par fit kiya jaye, because that's where it fits beautifully. And beautiful it certainly was, guys. On Radio Masi 24/7, giving you updates and chote-chote snippets and gossip from behind the scenes is your girl, Renuka. Of course, as I take you through the next gaanas, right till number one, one of musty top charts. That is गाना नंबर 9 followed by नंबर 8 जो पहली बार एंट्री मार रहा है। माँ बहन जी हाँ, माँ बहन के साउंड ट्रैक से वाला गाना है। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, आपने कुछ नोट किया है, द गानाज दैट वी आर राइट नाउ प्लेइंग, राइट, एक के बाद एक फॉर सम रीजन दे आर ऑल रीमेक्स, जो पहले गाने आ चुके हैं, ऊंचा लंबा कद जो मैं चलाने वाली हूँ, या धक धक चलाने वाली हूँ, या इससे पहले भी हमने जो गाने चलाए हैं, लॉट ऑफ देम हैव एक्चुअली ऑलरेडी कम इन वन फॉर्म और द अदर किसी और फिल्म में पहले। क्या बात है, कहाँ गई सारी की सारी क्रिएटिविटी। हाँ, क्या होगा इस दुनिया का।
2: रेडियो मस्ती 24/7, डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

आपको मालूम है जब भी कोई मुझे ऐसे मैसेज लिखता है ना, तो मुझे लगता है कि यार इनको ना लव स्टोरी और कयामत से कयामत तक और इस तरह की फिल्में बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये मैं को ना हम लिखते हैं जी। जैसे शोभा ने मुझे अभी भी लिखा, वी आर ऑल्सो हियर, तो मैंने कहा यार ये वी क्यों लिख रही है, अच्छा व्हाट शी मींस इज हम भी तो यही हैं। बहुत बढ़िया बात है शोभा, लेकिन आपके साथ कौन है ये भी तो बता दीजिए, क्योंकि पढ़ के कि आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप दो लोग सुन रहे हैं, मेरा तो दिल धक धक। माँ बहन के साउंड ट्रैक से, जैसे कि मैंने कुछ से पहले आपको बताया, गाना नंबर 8 कमिंग अप नेक्स्ट ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स, फॉलोड बाय ब्यूटीफुल रेट्रो बाय द वे, जो कि बहुत प्यार से आपको कुछ सुनाना चाहता है। क्या सुनाना चाहता है ये तो वो गाना आके ही आपको बताएगा, विच इज दिस वन। You know what I absolutely love? What I absolutely love about Masti Top Charts is कहाँ एक तरफ पूरे के पूरे latest गाने चलते हैं और दूसरी तरफ इतना contrast में इस तरह का music आता है, that totally makes your evening. It definitely makes my evening, guys. Radio Masti 24/7 पर। शोभा का कहना है आप और मैं बातें बनानी तो ना इनसे सीखे कोई। Trending song number 8.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: एंड एट दिस पॉइंट गाइस, आई डू वांट टू टॉक अबाउट डियर मस्ती दिल से। आप जानते हैं, एक ऐसा शो बन चुका है ये वाला, जो कि वाकई दिल से आपके दिल तक ऐसे पहुंचा है कि सबके दिल वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं कि कब है ये शो। एंड एक्चुअली एवरी ट्यूजडे इवनिंग वी हैव सो मेनी पीपल ट्यून्ड इन जस्ट टू लिसन टू दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, नॉट रियली, लेकिन टू फिगर आउट कि भाई ये जो चल रहा है दुनिया में, सबके मन में, ये कैसे इतने ब्रेव होके रेडियो पर शेयर कर लेते हैं। तो लेट मी टेल यू गाइज दैट डियर मस्ती दिल से इज नॉट जस्ट अ शो विच जस्ट शेयर्स योर फीलिंग्स और व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट इट शेयर्स ऑल दैट विदाउट आपका नाम लिए। तो इसीलिए वो बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किसी को भी पता होगा, बिकॉज हमारी टीम को भी नहीं पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इफ यू थिंक दैट यू वांट टू राइट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट इज ट्रबलिंग यू, दैट इज काइंड ऑफ गोइंग ऑन इन योर माइंड, तो बिल्कुल हमसे शेयर कीजिए। मैंने तो सबको आसान तरीका भी बता दिया। अगर अपना नंबर नहीं बताना चाहते हो, अपना नाम नहीं बिल्कुल पता लगाना चाहते हो, तो फिर एक नया सा जीमेल अकाउंट खोल लो और वहां से हमको ईमेल भेज दो। वी विल नेवर गेट टू नो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो यू कैन कीप दैट अ सीक्रेट एज मच एज वी विल, लेकिन डेफिनेटली अपने दिल में कुछ चल रहा है ना, जस्ट टॉक इट आउट, टेक इट आउट। एंड यस, अभी अभी जो गाना चल रहा था ना जो कि गाना नंबर 8 था, धक धक करने लगा, वो पता लगा है कि लोग जिम में वेट्स उठा रहे हैं और उसी तरह से धक धक करते करते 10 किलो 10 किलो। जी हाँ, मैं अपनी आरजे अंतरा की बात कर रही हूँ, जो इस समय जिम में है और सोच रही है कि वो वहां पर वेट लूज कर लेंगी हमारे ऐसे रोमांटिक गानों के साथ साथ। हो गया बेटे, हो गया। मैं और स्लो गाना चलाऊंगी इसके बाद में, ताकि तुम्हारी बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना हो पाए। मतलब मैं यहाँ बैठूं और तुम पतले हो जाओ ऐसे। बॉलीवुड फ्लैशबैक

चलते चलते के साउंडट्रैक से वाला गाना सुन रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। आई टेल यू आई लव द वॉइस ऑफ दिस कैरेक्टर, लेकिन जब ये अपनी हरकतों पे उतरते हैं और सारी दुनिया को देते हैं गालियां, तो ऐसा लगता है यार ये बंदा इतने शांत गाने कैसे गा सकता है। सीरियसली, इसके अंदर तो इतना ज्यादा भूकाल मचा हुआ है।

You know what I cannot imagine about this gana is कि चलते चलते के soundtrack में 2003 की film just imagine Athens में, जी हाँ Greece में, you are with Shahrukh Khan और वो वाला मतलब Santorini का beautiful island हो, प्यारा प्यारा मौसम हो, Shahrukh Khan तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो, आय हाय those beautiful captures, Greek architecture, आसपास भी Greek लड़के बड़े handsome वाले, चलो कोई नहीं Shahrukh Khan को देख लेंगे and the landscapes, ओए होए

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई थर्सडे शाम को या किसी भी शाम को जब मैं यहाँ पर बैठकर शो कर रही होती हूँ एंड समबडी टेल्स मी पता है हम जिम में हैं, पता है ये है, पता है वो है, तो मैं कहती हूँ अब तो जबरदस्ती धीरे धीरे वाले गाने चलाओ भाई, जब अपना कोई फायदा नहीं हो रहा इस टाइम दूसरे का क्यों होने दो। वाह वाह कितने कितने नेक ख्याल है मेरे।
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
2: मस्ती टॉप 20 पर आपका एक बार और स्वागत। और इस टाइम जो अगला गाना आने वाला ना, वेल आई कैन टेल यू इट इज प्रोबेबली द स्लोएस्ट गाना ऑफ टुडेज शो, बट इट्स द मोस्ट मीनिंगफुल गाना ऑफ टुडेज शो एज वेल, आई कैन टेल यू दैट। भाई क्या है कि मैं देख रही थी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 जो कि अब ऑलरेडी खत्म होने को आया है, जी हाँ, बट इट हैज ब्रॉट सम अमेजिंग हैप्पी न्यूज फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कोई ज्यादा बड़ी स्टार स्टडेड फिल्में नहीं आई हैं, लेकिन द वैरायटी दैट हैज कम हैज एक्चुअली वर्क्ड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। ये तो बात आप बिल्कुल मानेंगे। जी बिल्कुल, द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ने डिलीवर करे हैं द मच नीडेड बूस्ट टू द फिल्म इंडस्ट्री, जहां पर ऑडियंसेस ने बैक करी हैं फिल्म्स फ्रॉम अक्रॉस जॉनर्स एंड लैंग्वेजेस एंड बजट्स। मतलब थिएट्रिकल फुटफॉल इतनी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट रीजनल सक्सेसेस हैं, रिटर्न ऑफ कॉमेडी है, बहुत कुछ है और कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे को अपने फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस में आफ्टर वॉलेटाइल फ्यू ईयर्स, राइट। आप सोचिए एडमिशन इस टाइम पर इंडस्ट्री में दे आर अप बाय एटलीस्ट 10%, बॉक्स ऑफिस जो है एस्टिमेट्स हैं 16-17% ज्यादा, एंड डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फिर से कह रही है यस वी आर इन बिजनेस। लेकिन पेट्रियोटिक ड्रामा से लेके कॉमेडीज एंड रीजनल सिनेमा, सबसे बड़ा सक्सेस जो है वो आया है वेरीड सक्सेसेस से, जी हाँ, जैसे कि बॉर्डर 2, इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर। और धुरंधर तो मतलब 2026 को छोड़ो पता नहीं कितने सालों को पीछे छोड़ के पहुंच गया है आगे। एब्सोल्युटली 1100 करोड़, मतलब किसी ने कभी सोचा था 1100 करोड़ भी कोई चीज होती है? धुरंधर द रिवेंज और अब वो हमजा अली सान जो पहुंच गए जापान, वो वहां पर और भी ज्यादा नंबर छापने वाले हैं, जी हाँ। लेकिन द बिगेस्ट सरप्राइज सो फार हैज बीन मैं वापस आऊंगा, जी हाँ, 50 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है एंड इट इज स्टिल वेरी मच रनिंग। इट इज इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा डिस्पाइट अ मॉडेस्ट ओपनिंग। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ, जिसकी वजह से धीरे धीरे धीरे इस फिल्म ने मोमेंटम गेन किया है एंड इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स द हिट स्टेटस। एंड इम्तियाज ने ऑफकोर्स सबके आगे आके ये बात कही है कि भाई मुझे इंडस्ट्री ने ये कहा था कि कुछ कुछ भी हल्का फुल्का बना दो, ऑडियंस बिल्कुल कोई भारी चीज नहीं देखना चाहती, इमोशनल मत करो उनको। लेकिन मुझे ही लोगों ने गलत प्रूव कर दिया, बिकॉज मुझे लग रहा था ये चलेगी या नहीं चलेगी एंड आई एम सो ग्लैड that the emotions have hit the chord somewhere.

0: मैं इस गाने के साथ में इस घंटे को खत्म जरूर करूंगी, लेकिन आई प्रोमिस द नेक्स्ट आवर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ धमाल। इस टाइम आप सुन लो क्या कमाल है, उसके बाद आप बोलोगे क्या धमाल है, ठीक है ना। रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेणुका विद यू, एंड ऑफ कोर्स इट्स मस्ती टॉप चार्ट, स्टे ट्यून्ड।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 7।

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: और आपको जोश में रखने के लिए मैंने कहा ना, 5 बजे से मैं यहाँ पर आपके बिल्कुल साथ हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी,
1: बट मस्ती टॉप चार्ट्स पर चल रही हैं उससे भी बढ़कर हमारी और आपकी गॉसिप। जी हाँ, गॉसिप में इस समय मैं आपको लेके चलूंगी राम कपूर के पास। आप जानते हैं राम कपूर? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं आप। वही बड़े अच्छे लगते हैं, बाद में थोड़े छोटे हो गए, मतलब इनकी साइज की बात कर रही हूँ मैं। बट या व्हेन ही वाज इन, बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे लगता था वाकई द टाइटल इज एक्चुअली अबाउट हिम, बिकॉज बड़े लोगों को ये बड़े राम कपूर बहुत ही अच्छे लगते थे। बट वेल, ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, राइट नाउ आई डू वांट टू टॉक अबाउट हिज किस ऑन स्क्रीन। आप सोचिए कि हमारे जो टीवी शोज होते हैं उसके अंदर जरा किस विस के सीन थोड़े कम ही होते हैं, बिकॉज लॉजिक सारा ये था कि भाई इन फिल्मों, इन चीज़ों को देखने वाले, टीवी को देखने वाले सारे के सारे हमारे बच्चे बच्चे होते हैं घर में, इट्स अ फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? सो उसमें ये किस की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, इन्होंने किया। ही वॉज इन फैक्ट नेशनल टेलीविजन पर पहले एक्टर जिन्होंने ऑन स्क्रीन किस किया है साक्षी के साथ में। बट उसके बाद बाकी तो ड्रामा जो हुआ सो हुआ, इनकी पत्नी के साथ में जो इनका ड्रामा हुआ वॉज वर्थ इट, राइट? ही वॉज टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक ऑन स्क्रीन किस साक्षी तंवर के साथ, एंड देन सडनली घर में हो गया ड्रामा, क्योंकि ही वॉज लाइक वेरी सरप्राइज कि क्यों मेरी वाइफ गौतमी इतना ड्रामा कर रही है, बिकॉज पहले भी किया है 2 बार ऑन कैमरा मैंने लोगों को किस, तो इस बार क्या खास बात है? सो गौतमी ने ये कहा था कि भाई बाय दैट टाइम आई वॉज अ यंग मदर, मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनका ख्याल रख रही थी, और फिर मैंने कहा ये मेरा पति अच्छा है, मैं घर में ये सारे के सारे काम कर रही हूँ और ये बाहर जाके अपने किस विस करके ऐसे कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया। एंड देन मैंने अपने आप को ये कहा कि भाई मैं भी तो एक एक्टर हूँ, मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? बट आई वॉज possessive and out of love I just kind of informed him later ki aisa kaam mat karo. वैसे भी उसने मेरे को promise किया था वो 2 kisses करने के बाद कि वो फिर से नहीं करेगा. So well, हो जाता है, अरे हो तो जाता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात आगे ये है कि इन्होंने अब जो फिल्म इनकी आने वाली है, विच इज लॉकअप 2, जैसे ही राम कपूर ने वो फिल्म साइन करी वैसे ही गौतमी ने कह दिया कि डोंट यू वरी, आई विल नॉट गेट पोजेसिव अबाउट एनीथिंग, जाओ एंड मेक मी एब्सोल्युटली प्राउड। Time for another retro before we get into the groove of musty top charts. हमने किया है। चल यार सुनते हैं, सलमान खान गैलेक्सी से शिफ्ट हो रहा है, पता नहीं हेयर स्टाइल भी बदलेगा या नहीं बदलेगा, बट nobody can beat तेरे नाम का हेयर स्टाइल, है कि नहीं? रेडियो मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: It's time for
4: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: एन अमेजिंग ट्रैक गाइस, उदित नारायण अलका याग्निक 90s के ये गाने, ओ माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
0: भाई, आई वांट टू आस्क यू समथिंग एट दिस स्टेज। अभी मुझे किसी ने एक मैसेज लिखा और ये बोला कि यार एक सिचुएशन हो गई है। मतलब हम MRT स्टेशन पे थे और वहां पर एक फादर अपनी दो यंग लड़कियों के साथ में, डॉटर्स के साथ में आया एंड दे वांटेड टू गो टू द टॉयलेट। अब टॉयलेट ले जाने के लिए यंग फादर जो है ये उसने एंटर कर लिया लड़कियों वाला, द लेडीज टॉयलेट, राइट। एंड दोनों छोटे बच्चों को, बच्चियों को वो वहां पर लेके गया। नाउ द थिंग इज दैट when he was about to come out, right, there was a man outside jiski wife ko us toilet mein jana tha and he started making a noise that how dare you as a man enter a lady's toilet. He said, look, I have these 3-year-old twins jinka mereko dhyan rakhna hai, dono ladkiyon ka, inko main kahan leke jata, to mujhe lana hi tha. And that man kept shouting at him. तो क्या करना चाहिए यार? एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जब एक फादर अपने छोटी छोटी दो बेटियों के साथ में कहीं बाहर जा रहा है एंड दोज डॉटर्स नीड टू गो टू द टॉयलेट, तो क्या करना चाहिए उस फादर को? डू यू गाइस हैव अ सॉल्यूशन? दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर

0: गायब हो जाता है क्योंकि बेसिकली पेंटिंग रिप्लेस होती है एंड देयर इज जस्ट अ फ्रेम ओवर देयर. तो उसने कहा ये कौन सी पेंटिंग है. एंड द अदर गाय सेड यही तो पेंटिंग मंगवाई थी आपने. तो उसने कहा उस पेंटिंग में तो घोड़ा था. घोड़ा कहाँ गया? तो उसने बोला घास खाने चला गया है. इसीलिए वहां पर सिर्फ ब्लैंक पेंटिंग थी. आई मीन इट वॉज सच अ डम सच अ स्टूपिड थिंग. लेकिन फिर भी कई बार होता है ना, यू जस्ट डिसाइड कि तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ हंसना है.
1: तैया कैसे बनी फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
0: जी बिल्कुल, नंबर 6 पर हम चटनी बनाएंगे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय टॉप 5 गानास ऑफ टुडे. इट्स अभी हो रहे हैं 7:12 एंड आई प्रॉमिस यू 8 बजे तक आपको सारे टॉप चार्ट्स पता लग जाएंगे. नो चॉइस राइट.
2: Trending song, number 6.

0: ओ बेबी, हाँ बीच में तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता था ऑन रेडियो मसी 24/7 दिस इज मसी टॉप चार्ट्स एंड इट्स विद रेणुका.
1: Must be top 20 Bollywood chart busters of the week. Full on Renuka style.

0: एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 योर डार्लिंग रेणुका है. नाउ वांट्स टू टेल यू कि भैया जिंदगी में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ गई हैं. अब देखिए ना, थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा और वो सिर्फ ये कि यार एक फादर अपने दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अगर बाहर घूमने गया है और बच्चियों को टॉयलेट जाना है तो यार वो क्या करे, मतलब क्या करे वो. अब नाउ ही हैज़ टू टेक देम टू द लेडीज, राइट? व्हाट एल्स कैन ही डू. एंड इस केस में वहां पर एक आदमी जिसकी वाइफ जाने वाली थी अंदर लेडीज में, एंड ही सडनली सॉ दैट देयर इज दिस मैन इनसाइड विद द यू नो हूएवर द लिटिल किड्स. ही स्टार्टेड मेकिंग सच अ फस एंड देन दैट गाय वाज सो एंबैरस्ड एंड यू नो पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने कहा कि देखिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी. Obviously he was not saying anything. He just took his little daughters inside, you know. And imagine the impact on the little girls कि उसके डैडी से पुलिस बात कर रहे हैं and all that. So why make such a fuss? Instead आप अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि उसकी हेल्प कर दो और उस आदमी को बोल सकते हैं अब भाई साहब अब बाहर आ जाइए, लेट द लेडीज टेक केयर, है ना. कुछ भी मतलब इंसान कर सकता है, या आप दो मिनट बाहर खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया बाहर आ जाओगे तब मेरी वाइफ चली जाएगी. Why make such फर्स्ट. और यहाँ पर हमारी डियर आरती ने बहुत प्यार से लिखा है कि भाई आस्क द क्लीनर और समवन एल्स टू गार्ड द डोर व्हाइल यू हेल्प द किड्स एंड गेट द जॉब डन. इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन नहीं जी, हमें तो शौक है शोर मचाना ही हमने, क्योंकि हमारी तो जिंदगी में हमें दूसरा पकड़ा गया है, वो चोर है, तो हम तो मतलब चौधरी बनेंगे ही बनेंगे ना. गाना नंबर 5 कमिंग अप. जी हाँ, इट्स 7:22 बाय द स्टूडियो क्लॉक. मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी टाइप होती चली जा रही है एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई. मुझे चाहिए गर्म पानी, लेकिन गर्म पानी ज़्यादा मुझे चाहिए गर्म गर्म खबर जो मैं इस समय आपको और देना चाहती हूँ. और वो ये है कि रवीना टंडन ने बड़ी ही काम की बात करी है. ठीक है, व्हाट शी सेड इज दैट भाई मतलब बॉलीवुड कॉमेडीज, क्योंकि ह्यूमर जो 90s में था इट वाज अनइनहिबिटेड एंड इट वाज अनअपोलोजेटिक. कोई भी इंसान ना मतलब ये नहीं है कि दूसरे को ऑफेंड कर दिया, उसने केस कर दिया, नाराज हो गए, मोटे को मोटा नहीं कह सकते, काले को काला नहीं कह सकते, गोरे को गोरा नहीं कह सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते आज के जमाने में, राइट? क्योंकि सब ऑफेंड हो जाते हैं. सो रवीना वॉज बेसिकली जस्ट सेइंग दैट बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, परदेसी बाबू, इस तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया. एंड शी सेड कि हम तो मजाक उड़ाते थे यार खुल के और लोग हंसते थे, बट नाउ द लैंडस्केप हैज चेंज ड्रास्टिकली, मेकिंग पीपल लाफ विदाउट समवन गेटिंग ऑफेंडेड प्रोबेबली इट्स द अल्टीमेट टाइट रोप वॉक टुडे. बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन 90s में बड़ा आसान था. मतलब हम लोग अच्छे टाइम पर निकल गए एंड दैट इज सो ट्रू. आप लोग वाकई अच्छे टाइम पर निकल गए. बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, एज एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इन लाइफ सो डज आवर शो. कमिंग अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 5.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song, number 5.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: Trending song number 4.

0: मस्कारा, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। सपना जी ने क्लियरली बोल दिया है कि वो जाके तुम्हारा वीडियो देखेंगी और डिसाइड करेंगी आर यू वर्थ इट और यू आर नॉट। लग गई तुम्हारी। From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. Masti Top 20 पे आप तो हमें join कर ही चुके हैं, and in case you are confused, it is not Friday बेटा, कल Saturday नहीं है, कल office जाना है आपको, alright? Just the show का दिन बदला है, आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं बदला है। सो ऑफिस में जाकर बॉस को ये नहीं बोल सकते, अरे वो कल टॉप चार्ट सुना तो लगा कि फ्राइडे है। नहीं नहीं, हम इल्जाम नहीं लेंगे अपने सिर। ऑलराइट, ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, द गाना यू जस्ट हर्ड, इट्स कॉल्ड मस्कारा, एन अमेजिंग ट्रैक इट इज, ऑफ कोर्स इट इज अ नंबर 4। जी हाँ, इस हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी नंबर 4 पर था ये वाला गाना। इस गाने को लिरिक्स जो है लिखे हैं इरशाद कामिल ने, एंड द सिंगर्स, जी हाँ, जैसे कि मैंने बीच में कहा, वेदांग रैना और साथ ही में नीलांजना घोष। जी हाँ, दोनों की आवाजें आपने सुनी, एंड ए आर रहमान का म्यूजिक एब्सोल्युटली अमेजिंग। और एक और चीज जिसको मुझे सीरियसली मेरा ध्यान जाता है इज द फ्लूट। जी हाँ, बांसुरी अश्विन श्रीनिवासन ने वो बजाई है, एंड इट इज एन अमेजिंग गाना कमिंग फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ मैं वापस आऊंगा। और एक गाना है जो जाने का वाकई नाम नहीं ले रहा, वो भी वापस आता ही रहता है चाहे हम बुलाएं या ना बुलाएं। भाई साहब, पिछले हफ्ते तो मुझे यहाँ पर लिख के भेज दिया किसी ने कि इसको हम टॉप चार्ट से क्या निकाल सकते हैं, और मैंने कहा ओ बाप रे, इसको हम रिटायर कर देते हैं। तो उन्होंने बोला हम क्यों रिटायर क्यों करें इसको, इज्जत से इसको निकाल फेंको। मैंने कहा पेंशन लेने दो, कहते नहीं हमें इससे पैसे लेने चाहिए। ओ माई गॉड, दैट वॉज वन कॉन्वर्सेशन, आई थिंक इट वॉज विद निकिता इफ आई रिमेम्बर। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7, द नेक्स्ट ट्रैक कमिंग अप इज गाना नंबर 3, विच इज एक्चुअली धुरंधर गहरा हुआ। ये राज कितना गहरा होगा आपको क्या लगता है?
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song number 3.

भाई अब ऐसा है, जितना भी पैशनेट, जितनी भी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखा दो, कुछ भी कर लो इस गाने के साथ में, लेकिन फिलहाल निकिता ने फिर से सुन ली है ये बात और वो फिर से इस हफ्ते मुझसे डिसअपॉइंटेड है। अरिजीत सिंह, ये मैसेज तुम्हारे लिए है, वो तुमसे

0: I tell you, there are some songs that absolutely touch your soul. चाहे जितने भी टाइम के बाद में जब भी आप सुने उस गाने को, actually it does touch, right? ये है, of course, पल पल दिल के पास, किशोर दा की आवाज एंड ब्लैक मेल फिल्म से गाना. उफ, what a song.
1: They are fresh. They are hot.

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: अब जोश में तो आपको रखने के लिए हम ही होते हैं ना, तभी तो 5 बजे से अब तक बिल्कुल एब्सोल्युटली आप मेरे साथ यहाँ पे गप्पे शप्पे मार रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यू आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द गाना नंबर 2 and 1 व्हिच इज गोना प्ले वेरी वेरी सून। बस एक खबर आपको दिए देती हूँ कि भाई अभिषेक बच्चन जी 26 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं बॉलीवुड में इस टाइम पर। मुझे तो पता नहीं इनके लॉन्च रीलॉन्च के बीच में देखिए ना 26 साल हो भी गए। एंड अगर इनकी वाकई फिल्मों की बातें करी जाए तो गुरु, युवा, बंटी बबली, साथ ही में ब्लफ मास्टर, मे बी द धूम फ्रेंचाइज राइट, या बिग बुल कह लीजिए, बॉब विश्वास, 10वीं, घूमर, आई वॉन्ट टू टॉक, मतलब आई डोंट नो वॉट टू टॉक, सीरियसली इस तरह की फिल्म है। वेल ही इज not done really great because obviously we've talked about this several times, unke ghar mein hi unko overshadow karne wale bade sare log hain, lekin chaliye wo sab bhi chhodiye, but I really like the guy and he has been talking about insecurities. ji haan, reflection thodi si karte hue 26 saal ho gaye, unhone kaha ki bhai us samay mujhe nahi pata tha mujhe kya karna hai kya nahi, lekin aaj definitely mujhe pata hai with a lot more conviction, bahut si maturity aur calmness ke sath mein ki nahi insecurity kya hoti hai is industry mein aur aaj ke din mujhe kya karna chahiye. chalo दूर आए, देर आए, दुरुस्त आए, आए तो सही, बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 द नेक्स्ट टू ट्रैक्स दैट आई हैव आर गाना नंबर 2 एंड गाना नंबर 1। तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा होने वाला है आज के दिन में। कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से बंधु, एंड जैसे धुरंधर का एक गाना दूसरे के साथ कॉम्पीट करता था, वैसे ही कॉकटेल 2 का एक गाना दूसरे से एब्सोल्युटली कर रहा है कॉम्पीट। फिल्म चाहे जैसी भी रही हो लेकिन गाने कॉम्पिटिशन बिल्कुल दे रहे हैं। तो बताइए कौन सा होगा 1 और कौन सा होगा 2। लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है ना, मुझे तो चलाना ही पड़ेगा इस टाइम पर। तो चलिए गाना नंबर 2 कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song number 2.

0: अरे माशूका माशूका माशूका, ओहो दैट्स ऑल आई हियर राइट नाउ. इनफैक्ट आप जानते हैं कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2, जिसकी बातें हो रही हैं, प्रीतम के लिरिक्स, प्रीतम का म्यूजिक एंड द लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य. ये जो पूरी एल्बम है ना, इट जस्ट हैज अमेजिंग ट्रैक्स मिक्सिंग बीट साइड एनर्जी विद इंटेंस रोमांटिक एंटैंगलमेंट्स. और माशूका की प्लेजरिज्म कॉन्ट्रोवर्सी में ऑब्वियसली प्रीतम ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सिमिलैरिटीज. लेकिन अरिजीत सिंह ने आगे अपना जादू दिखाया इस पूरी एल्बम में, और बंधु 2.0 इम्प्रोवाइजेशन, जी हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, टर्न्स आउट टू बी द किलर दिस इवनिंग एज वेल ऑन रेडियो मस्ती 24/7. कमिंग अप इज गाना नंबर एक इन जस्ट अ लिटिल बिट.
1: They were not chosen. They were created.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलावेंगे.
1: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
1: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
0: While I remind you one last time, guys, that you have to watch Alpha this weekend. And अगर आप उन top 10 लोगों में से हैं जो हमें भेज देते हैं अपनी tickets के stubs, then you will get reimbursed for the tickets as well. So हमें बताइएगा, review चाहिए हमें आपसे. And Radio Masti 24/7 पर coming up is गाना number 1, जी हाँ, उसी के साथ साथ रेनुका यहाँ से 9-2-11 और बंधु 2 जो गाना भी आप सुनने वाले हैं, उसके बीच में एक बड़ी सी क्यूट सी बात हुई, वो बता देती हूँ आपको. रश्मिका मंदाना एंड ऑफ कोर्स शाहिद कपूर दोनों जब डांस कर रहे थे, शी स्टॉप्ड, शी इंटरप्टेड द डायरेक्टर मिड सीन, और उसने उसे पूछा कि भाई क्या मेरे को दोस्त बनना है या रोमांटिक लीड बनना है, इतना तो बता दो, कैसे रिएक्शन दूं मैं. तो शाहिद ने बड़े आराम से टेंशन को खत्म करते हुए कहा, चल भाई बहन ही बन जाते हैं. Radio Masti 24/7. It is time for me to say goodbye, guys. And I hope you enjoy your Gana number 1 and you enjoyed your Masti top charts. I will see you tomorrow morning on Masti Madness with RJ Antra. Lekin filhal ke liye yahan se nikalne ka bilkul aapse ijazat chahiye. Have a fantastic rest of the evening, guys. Mwah! Love you all and enjoy this.
5: Trending song.
6: Check it out.
5: Number 1.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

Hi, namaste, and welcome, a very warm one indeed, to another beautiful and new episode of Dear Masti Dil Se, जहाँ पर बात होती है आपके दिल से हमारे दिल तक. Definitely, surely, well, we are there to listen. राइट भाई, फिलहाल आज शो की शुरुआत करते हुए मैं हूँ अंतरा, यहाँ पर आपके साथ. एंड कोरिया में पता है एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड जोंग. जोंग कहते हैं उसको, JEONG. इसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन शायद नहीं है, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ तो जोंग वो कनेक्शन है जो धीरे धीरे बनता है लोगों के बीच, एक घर से, एक जगह से, एक याद से, कभी कभी तो किसी चाय वाले अंकल से भी या फिर हमारे यहाँ पे टैक्सी वाले ड्राइवर से. सबसे इंटरेस्टिंग बात, जोंग जो है ना, सिर्फ प्यार नहीं होता, वो केयर है, वो अंडरस्टैंडिंग है, और वो एहसास है कि आप यहाँ पर अकेले नहीं हो. मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक जोंग जो है होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हमें एक्सप्लेन ना करना पड़े कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, बस कोई सुन ले. और शायद इसी सोच से डियर मस्ती दिल से बना एक ऐसा शो जहां हमने कॉन्शियसली एक सेफ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है, जहां आप अपने दिल की कोई भी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल्स नहीं, और सबसे जरूरी कंप्लीट अनोनिमिटी. यहां नामों की जरूरत नहीं पड़ती. आपके लिए हम डियर मस्ती, और हमारे लिए आप राइट डियर लिसनर. बस इतना सा रिश्ता ही काफी है. कभी कभी ना अपनी बात किसी स्ट्रेंजर को कहना किसी अपने से कहने से ज्यादा आसान लगता है. और अगर आप भी अपने दिल का कुछ भी ऐसी बात आप हल्का करना चाहते हो तो आप हमें बिल्कुल लिख सकते हैं 9151893 पर, या फिर किसी भी ईमेल आईडी से हमें लिखिए listener@radiomasti.com.sg पर. हर लेटर को हम पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हैं और हर इमोशन को पूरी इज्जत के साथ सुनते हैं. तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं एक और शाम दिल की बातों के नाम. ये है डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
2: एक्साइटेड
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा और बिल्कुल जैसा कि हमारे शो पे हम एक एक करके चिट्ठियां पढ़नी शुरू करते हैं, तो बिल्कुल पढ़ते हैं हमारी आज की पहली चिट्ठी। डियर मस्ती, माय फ्रेंड से कि मैं हर बात पे बहुत सॉरी बोलती हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बट दिस इज हाउ आई एम। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती इसलिए सॉरी बोल देती हूँ। मैं क्या करूँ? डियर लिसनर, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। पता है मुझे इस लेटर में सॉरी शब्द से ज्यादा एक और इमोशन नजर आया और वो इमोशन है कॉन्स्टेंट फियर ऑफ अपसेटिंग पीपल। नहीं, डिड आई गेट दैट राइट? कभी कभी हम इतनी बार सॉरी बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर सामने वाला नाराज हो गया तो, अगर मैंने किसी को इनकन्वीनियंस कर दिया तो, अगर मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा बुरा लग गया तो। और धीरे धीरे ये सॉरी ना एक हैबिट नहीं रहता, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म सा बन जाता है, एक तरीका जिससे हम रिलेशनशिप्स को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे में लोग जनरली ना काफी केयरिंग होते हैं, एम्पैथेटिक, एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है उनमें, उन्हें दूसरों की फीलिंग्स बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। लेकिन कई बार इस प्रोसेस में वो अपनी फीलिंग्स को काफी पीछे छोड़ देते हैं और शायद इसीलिए आपके फ्रेंड्स ने भी आपसे ये बात कही। हो सकता है उन्होंने आपके अंदर का वो चीज देख लिया हो जो आपने खुद अभी तक नोटिस नहीं किया। और देखिए, किसी भी चेंज का पहला स्टेप जो है सोल्यूशन नहीं होता है, रियलाइजेशन होता है। जब तक हमें ये समझ में ही नहीं आए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तब तक उस हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अभी फिलहाल आप इस बारे में सोचिए कि आप हर बार सॉरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपसे गलती हुई है, या इसलिए क्योंकि आपको हर वक्त सबको खुश रखने की आदत पड़ गई है। इस सवाल का जवाब शायद आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता दे। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटती हूँ यहाँ पर। यस, क्या वजह है कि आप बार बार सॉरी बोलते हैं? क्या आप इस चीज को बदलना चाहती हैं? आई डोंट नो, लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट इट। स्टे विद मी, यह है डियर मस्ती दिल से ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हुआ झुमका?
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे डियर लिसनर का कुछ एक ऐसा खत अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। उन्होंने लिखा कि उनके फ्रेंड्स हमेशा उनसे कहती हैं कि वो हर बात पर सॉरी बोल देती हैं। उन्हें भी लगता है कि शायद वो ज्यादा सॉरी बोलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए। इट इज व्हाट इट इज। सो माई डियर लिसनर, सबसे पहले एक बात, आपको अपनी काइंडनेस छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स हू यू आर एंड दैट्स वेयर वी विल फोकस, ओके? और ना ही आपको किसी और इंसान में बदलने की जरूरत है, लेकिन शायद एक छोटा सा डिफरेंस समझना बहुत जरूरी हो गया है। बीइंग काइंड और बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स फीलिंग्स दोनों अलग बातें हैं। बहुत बार हम अननेसेसरीली सॉरी बोल देते हैं जब सामने वाले को बुरा लग ही नहीं रहा होता है, या जब गलती हमारी होती ही नहीं है, और धीरे धीरे हम हर सिचुएशन का इमोशनल बर्डन अपने कंधों पर उठाने लग जाते हैं। काफी सारे, अगर आप रिसर्च पेपर्स वगैरह, मैंने थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है यहाँ पर, जस्ट सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर आंसर टू योर लेटर। Apologize for your mistakes, not for your existence. सोचिए अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं, sorry, अगर आपको पानी चाहिए, oh sorry sorry, अगर आप अपनी opinion रखते हैं, sorry, धीरे धीरे आपका दिमाग ये मान लेता है मेरी important कोई भी needs नहीं है फिर तो। And dear listener, ये सच नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा experiment देती हूँ, बस एक दिन के लिए। हर बार जब आपको लगे कि मतलब आप सॉरी बोलने ही वाले हैं, एक सेकंड के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए दैट क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है। अगर जवाब हाँ है दिल से सॉरी बोलिए, लेकिन अगर जवाब ना है तो उसकी जगह थैंक यू को रिप्लेस कर दीजिए। सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट की जगह थैंक यू फॉर वेटिंग, ओ सॉरी फॉर आस्किंग की जगह थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं बदलते, ये धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप भी बदलते हैं, और सबसे पहले आपका रिलेशनशिप खुद के साथ। एंड पता है, मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। वो शायद आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि हर वक्त माफी मांगने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस खुद को परमिशन देने की जरूरत होती है, अपनी जगह लेने की, अपनी बात कहने की, और बिना गिल्ट फ्री किए जीने की। Hope this helps, my dear listener. And याद रखिए, अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा खूबसूरत बात होती है, लेकिन हर वक्त सॉरी बोलकर अपनी वैल्यू कम करना जरूरी नहीं। ये है डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: एंड रेडियो मसी 24/7 पर आपका स्वागत। जी हाँ, आवाज कुछ अलग हो गई अचानक से। सही पहचाना आपने, बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि यहाँ पर जॉक भी तो अलग हो गया ना।
1: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से।
0: क्योंकि रेडियो पर बैठा कभी कभी एक कोई अनजाना इंसान आपको अपने सारे दोस्तों, सारे रिश्तेदारों से बेहतर समझ लेता है। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे भाई, हम तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर चिट्ठियाँ जो आती हैं ना, वो हमको अलग अलग लोगों से आती हैं और अलग अलग जॉक्स के नाम आती है। तो चलिए थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाते हैं यहाँ पर, लेकिन आप ही की चिट्ठियों से आप ही से बातें करते हैं। सो द नेक्स्ट वन। हाय रेणुका, आई एम अ मदर ऑफ टू यंग एडल्ट्स इन देयर 20s। वेल, दैट्स सो स्वीट। लेकिन इनका कहना है कि इनके हस्बैंड और ये जो है ना, इन्होंने डिसाइड किया था कि ये ओल्ड फैशन पेरेंट्स नहीं बनेंगे, लाइक द स्ट्रिक्ट वंस, जिसे ये बड़े हुए थे उस टाइम इनके पेरेंट्स थे। वी वांटेड आवर चिल्ड्रन टू बी एबल टू टॉक टू अस अबाउट एनीथिंग, और हमने इनकरेज करी है कॉन्वर्सेशंस, रिस्पेक्टेड उनकी प्राइवेसी, ट्रैवल किया इकट्ठा, वी लाफ टुगेदर एंड ट्राई टू बिकम देयर फ्रेंड्स। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम अस। समटाइम्स दे लाई अबाउट वेयर दे आर गोइंग और टेल अस हाफ ट्रूथ्स बिकॉज दे थिंक वी विल वरी और डिसएग्री। व्हेन वी इवेंचुअली फाइंड आउट द ट्रूथ, इट हर्ट्स। आई कीप आस्किंग माई सेल्फ, वर वी रॉन्ग इन ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद आवर चिल्ड्रन? वॉज द ओल्डर स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, जहाँ पर बच्चे सिंपली रिस्पेक्ट और ओबे किया करते थे अपने पेरेंट्स को, इज दैट एक्चुअली बेटर, या यही है पेरेंटिंग एडल्ट चिल्ड्रन की? आई एम कन्फ्यूज्ड एंड आई एम अ वेरी वरिड मदर। तो फिर वरिड मदर जी, ऐसा है वेलकम टू पेरेंटिंग, जहां पर कहते हैं ना, कोई गाइड बुक नहीं होती, कोई रूल बुक नहीं होती, एवरी डे इज न्यू। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और फिर उसके बाद आपकी बातों का भी जवाब देते हैं। फिलहाल आपको हम बताएं कि यही है आपके बंधु, यही है सखा, और हम भी वही हैं। Let's raise the tempo a little bit, guys, because ये शो में मैं देख रही हूँ बड़ा ही intense गाने चलते हैं, intense बातें होती हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका विद यू।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 पर प्यारे प्यारे गानों के साथ में मेरी प्यारी प्यारी बातें मेरी ही नहीं आरजे अंतरा की और आरजे नुपुर की भी, तो वेलकम टू डियर मस्ती दिल से। डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने दिल की कोई भी बात है ना, हमें लिख दो। ना हम जज करेंगे, ना हम आपका नाम किसी को बताएंगे, लेकिन वी प्रॉमिस कि हम आगे का जो रास्ता है ना, वो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। सो वेल, ब्रेक से पहले यहाँ पर बात हो रही थी अबाउट अ पेरेंट जिन्होंने लिखा कि वो बहुत ही अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली किस्म के पेरेंट्स रहे हैं, लेकिन फिर भी लेटली ऐसा लगता है कि वो बच्चे उनसे कुछ कुछ बातें छुपाने लगे हैं। तो अब परेशानी इस बात की है कि क्या पुराना पेरेंटिंग स्टाइल बेटर था या दोस्त बन के अपने बच्चों का रहना बेटर है। वेल, आई थिंक एवरी पेरेंट लिसनिंग टुडे स्माइल्ड इस बात को सुन के, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई हर पेरेंट के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। पहले तो मुझे बताने दीजिए कि वांटिंग टू बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड, इट्स अ ब्यूटिफुल इंटेंशन, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना, समटाइम्स दे डोंट नीड अनदर फ्रेंड, दे ऑलरेडी हैव फ्रेंड्स, दे नीड पेरेंट्स जो अप्रोचेबल हों। तो छोटा सा डिफरेंस है, एक फ्रेंड usually agrees with you, a parent sometimes has to ask difficult questions, set boundaries, या कभी कभी ना भी कहना पड़ता है, and that doesn't make you less loving, it makes you a parent. और बच्चे जो छुपाते हैं बातें, honestly, they don't always lie because they are bad kids. Sometimes इसलिए झूठ बोलते हैं because they are afraid of disappointing us. Sometimes एक आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, समटाइम्स दे सिंपली वॉन्ट टू मेक देयर ओन डिसीजंस विदाउट एक्सप्लेनिंग एवरी डिटेल, दैट डजंट मेक इट लाइंग, ओके। बट अगर आप उसके रीजन को समझें तो शायद आप भी जवाब बेहतर देंगे। ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग बेटर था? नॉट रियली। कुछ घरों में ओबीडियंस, बट दैट वॉज ऑल्सो डर, है ना। आज की पेरेंटिंग में ज्यादा ओपननेस है, फ्यूअर बाउंड्रीज हैं, लेकिन आंसर इजंट अबाउट चूजिंग वन ओवर अदर, इट्स अबाउट द बैलेंस। सो बी द पेरेंट योर चाइल्ड कैन कम टू विदाउट बीइंग टेरिफाइड, बट आल्सो द पेरेंट हुज वैल्यूज दे अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। ये आसान नहीं है, मैं जानती हूं। तो बस ट्रस्ट बनाइए और घर को एक सेफ प्लेस बनाइए। पेरेंटिंग जो है ना, जैसा मैंने शुरू में कहा, डजंट कम विद अ मैनुअल, इट कम्स विद मोमेंट्स, और हर जनरेशन सीखती है जैसे जैसे दे पास थ्रू इट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड बिलीव मी, आपके बच्चे जो है ना, वो आपके दोस्त ही बनकर ज्यादा बेहतर रहेंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। एब्सोल्युटली, आपके जैसा यार कहाँ यार, दोस्त आते रहेंगे, रिश्तेदार आते रहेंगे, लेकिन माँ बाप हमेशा बेहतरीन चाहेंगे बच्चों की, राइट? गुड इवनिंग एवरीवन।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: क्या आप सुबह उठने के साथ मिरर देखते हैं? नहीं, जिस तरह से आप देखते हैं उस तरह वाली बात नहीं कर रही हूं मैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर, एंड शीशे देखने से मेरा मतलब ये है कि आप अपना प्रतिबिंब, मतलब आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखते हैं? हाँ, तो देखा कीजिए, बिकॉज आपके अंदर क्या चल रहा है, आप काम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन पा रहे हैं या नहीं। ऐसा शीशा देखना, अपना मिरर इमेज देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, बिना टाइम गवाए मेरे हाथों में जो लेटर आया है उसमें क्या लिखा है पढ़ती हूँ मैं। हाय डियर मस्ती, मेरे अंदर बहुत ही एक स्ट्रेंज हैबिट है जो आपको सुनकर भी बहुत अजीब लगेगी, इसीलिए मैं इस लेटर में अपना नाम भी नहीं लिख रही हूँ। एंड वो हैबिट ये है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत है। मतलब मुझे अगर कहीं मौका मिलता है, लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और मुझे कोई चीज़ दिख रही है, मुझे वो पसंद आ गई, मिस्टीरियस लग रही है, तो मैं उसे चुरा लूँगी। और ये हैबिट अब मेरी बहुत पुरानी हो गई है और मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। अरे आप डेफिनेटली गलत कर रहे हो यार, जो भी कर रहे हो। हाँ, अच्छा आप ये बताओ, अगर आपकी सबसे कीमती कोई चीज़ हो, आपने मेहनत से पाई पाई जमा करके उसे खरीदा हो, कोई उसे ऐसे ही माइक्रो सेकेंड्स में चुरा कर चला जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, तो देखो ये आदत रातों रात तो आपकी ख़त्म होगी नहीं, आपको क्या करना है, यू हैव टू पनिश योर सेल्फ, है ना। आपकी जो सबसे फेवरेट हैबिट है दैट इज अ स्टीलिंग, पहले तो उसे छोड़ना होगा। उसके अलावा आपकी जो एक फेवरेट आदत हो, है ना, उसको फॉर अ वाइल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पनिश कर रहे हो एंड आपने कुछ गलत किया है, उसका आप कहीं ना कहीं एक पश्चाताप कर रहे हो। एंड बाय द टाइम विद इन 3 to 6 months अगर आपने अपनी सबसे फेवरेट हैबिट्स को क्विट किया ना, तो यू विल फील गिल्टी कि मैं उस पुरानी बुरी हैबिट को आगे कंटिन्यू नहीं रखूंगी। हाँ, पर मुझे जो पसंद है अपनी लाइफ में वो करूँगी। हाँ, तो छोटा छोटा पनिशमेंट खुद को भी देना आना चाहिए। बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर बातें कंटिन्यू है मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

मुझे तो आज भी नहीं याद है कि मैंने इतने साल स्कूल की पढ़ाई में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या यूटिलाइज किया। बस मतलब की बातें याद रखना इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर, एंड मतलब की ना सही आपकी इन एंड आउट बातें जो आप किसी से नहीं कह पाते हमें डियर मस्ती दिल से शो पर लेटर्स के थ्रू लिखकर भेजते हैं। अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती, मैं धीरे धीरे भुलक्कड़ बनता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं सुबह का रखा सामान शाम को नहीं ढूंढ पाता हूँ। मुझे इतनी कम उम्र में ऐसी आदत लग गई है कि मुझे अजीब लगता है ये आदत किसी को बताने में। भाई जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, ये सिर्फ आपकी अकेले की आदत नहीं है, ये 10 में से 7 लोगों की आदत बन चुकी है जिन्हें भूलने की आदत लगती जा रही है। सो फॉर दैट वॉट यू कैन डू, मीनवाइल आपको ना एक प्रैक्टिस करनी है। कुछ वक्त के लिए आप जो काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ क्या रख रहे हैं, उसके छोटे छोटे ना पॉइंटर्स बना लीजिए। छोटी सी टू डू लिस्ट बनाइए दिन भर की, और वो सारी बातें जो आप अक्सर भूल जाते हैं उनको लिख लिख कर अपनी आंखों के सामने रखिए। फिर धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें रहने लगेंगी। और उससे भी बड़ी बात एक बताऊं, आप टेंशन बहुत लेते हैं, आप काम की वजह से बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, आप चाहते हैं कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और ये तो कर ही लूं। इस चक्कर में आपको जो एक्चुअली में करना है ना, आप कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। प्लीज अपने आप को ओवर बर्डन करना कम

0: पता है।
1: बिल्कुल, आपके एंटरटेनमेंट को थोड़ा और ज्यादा बर्डन फील कराने के लिए आ रहा है ये खूबसूरत सा गाना डियर मस्ती दिल से शो पर।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और अगली चिट्ठी मेरी तरफ. जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, और मैं हूँ रेणुका. डियर मस्ती दिल से. भाई, अगला जो लेटर है ना हमारे पास, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेटर है, बट काफी डेलिकेट सा सब्जेक्ट है. मुझे ये एक मदर इन लॉ ने लिखा है, तो ध्यान से सुनिएगा. Hi Renuka, this may sound like an insecure mother-in-law complaining, but honestly, मैं ये चिट्ठी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब तक pretend कर सकूँगी that I am okay. मैं smile करती हूँ, I go out with friends, I keep myself busy, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत नाखुश हूँ. A few years ago, I lost my husband. Since then, I've been living with my son and daughter-in-law. जब मेरे पति थे, लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट. वी वर अ टीम, वी मेड डिसीजंस टुगेदर, वी लाफ टुगेदर. लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, आई नो ही डज, बट ही हैज चेंज्ड. मे बी दैट्स नेचुरल, ही हैज हिज ओन फैमिली, एंड आई डोंट थिंक, एंड इवन माई डॉटर इन लॉ हु यूज टू सिट विद मी, चैट विद मी एंड आस्क फॉर माई एडवाइस, ऐसा लगता है वो स्ट्रेंजर बन गई है. They are not bad people, they are busy, they have responsibilities, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने ही घर में एक मेहमान बन गई हूँ. Sometimes they make plans and I find out later. Sometimes सभी हंस रहे होते हैं दूसरे कमरे में और मुझे पता भी नहीं होता वो किस बारे में बात कर रहे हैं. ये जो साइलेंस है, ये बहुत हर्ट करता है मोर देन दी आर्ग्यूमेंट्स. मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू स्टे विद देम. And if I'm honest, this is not how I imagined growing old. मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं invisible हूँ, and slowly I'm slipping into depression. क्या करूँ मैं? Okay, you know what? मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सा गाना चलाने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि एक माँ कितनी ज़रूरी है, वो शायद छोटी सी झलक आपको इस गाने में समझ में आएगी. पहले तो आप स्माइल कीजिए, वापस आके आई प्रोमिस आपकी ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके बारे में बात करूंगी. ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड.

और इन गानों के उस पार रेणुका आपका कर रही है इंतजार. वेरी गुड इवनिंग, मैं रेणुका आपके साथ. एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर फेवरेट शो, आप ही का शो, आप ही की बातें, सिर्फ हमारी आवाज. डियर मस्ती, दिल से. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. एंड थैंक यू सो मच. मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो अभी अभी एक मदर इन लॉ ने हमको लिखा है, वो कह रही हैं, इनसिक्योर मदर इन लॉ साउंड कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हूँ. लाइफ कैसे चेंज हो गई, पहले मेरे हस्बैंड थे, मुझे अपने बेटे का घर बहू के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, एंड अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मैं इनविजिबल होती चली जा रही हूँ सबके लिए. आई थिंक योर लेटर विल टच मेनी हार्ट्स टुडे. क्योंकि एक मदर इन लॉ का लेटर नहीं है, इट्स अ लेटर अबाउट लोनलीनेस. मैं आपको एक बात बताऊँ, गिल्टी मत फील कीजिए फॉर फीलिंग द वे यू आर. लूजिंग योर लाइफ पार्टनर डज चेंज एवरीथिंग, सिर्फ आपके घर के लिए नहीं, इट चेंजेस योर आइडेंटिटी, है ना. बहुत सालों के लिए आप किसी की पत्नी रही हैं, एंड सडनली आप एक माँ, मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर, और कोई नहीं पूछता हाउ आर यू कोपिंग. मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कभी कभी हमारे जो बच्चे होते हैं ना, रियलाइज नहीं करते दैट वी आर फीलिंग लेफ्ट आउट. नॉट बिकॉज दे डोंट लव अस, बट बिकॉज लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, काम है, उनके बच्चे हैं, बिल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड बिफोर एनीवन नोटिसेस डिस्टेंस आ जाता है घर के अंदर ही. एक बात आपको सजेस्ट करूँ क्या, किसी का इंतजार मत कीजिए टू गेस वॉट यू आर फीलिंग. बता दीजिए, गुस्से में नहीं, एक्यूजेशन से नहीं, सिर्फ सच्चाई. मे बी एक शाम अपने बेटे के साथ सिर्फ ये कहिए, आई डोंट नीड यू टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मिस करती हूँ. ये जो शब्द है ना, दे मे ओपन अ कॉन्वर्सेशन जो आप दोनों बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं टू हैव दैट. और एक और चीज़, प्लीज डोंट लेट योर एंटायर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन वन हाउस होल्ड. अपनी फ्रेंड्स से मिलते रहिए, जितनी एक्टिविटीज कर सकें कीजिए, वॉलंटियर कीजिए, कुछ नया सीखिए, एंड फाइंड अ रीजन टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस दैट बिलोंग्स ओनली टू यू. बिकॉज पर्पस सबसे बड़ा मेडिकेशन होता है लोनलीनेस का, जानते हैं ना आप ये. तो आज अगर आपको लग रहा है कि डिप्रेशन में जा रही हैं आप, तो एक डॉक्टर से, काउंसलर से जरूर बात कीजिए, मदद मांगिए. आपने हमें चिट्ठी लिखी है, उसके लिए थैंक यू. एक बात कहूँ, ग्रोइंग ओल्डर शुड नॉट मीन बिकमिंग इनविजिबल. और अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये बताइए, लास्ट कब था जब आप उनके साथ 20 मिनट के लिए बैठे थे विदाउट अ फोन इन योर हैंड, बताओ. नहीं याद ना. दैट्स व्हाट आई वांट यू टू थिंक अबाउट.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा आपके साथ। और जी हां, अभी तक सब अपनी अपनी चिट्ठियां यहां पर पढ़ रहे थे। इस बार लेटर नहीं, एक सवाल पूछना चाहती हूं, एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूं आप सभी से जिसका शायद कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, बस दिल से आने वाला आंसर है। बताएंगे ना आप मुझे? सवाल कुछ ऐसा है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो वो कौन सी एक चीज है जो आप जरूर करना चाहेंगे? सोचिए, किसी को फोन, किसी से माफी मांगना, किसी को आई लव यू कहना, एक ट्रिप पे जाना, बंजी जंपिंग करना, अपने पेरेंट्स के साथ पूरा दिन बताना, या शायद सिर्फ बिना किसी टेंशन के एक कप चाय पीना। पता है हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है? हम जिंदगी को पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रमोशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद, जब टाइम मिलेगा, अगले साल, वो नेक्स्ट ईयर कभी कभी सालों तक आता ही नहीं, है ना। हम इतनी चीजों को ना बैक बर्नर पे रख देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन सच बताऊं, हम में से किसी को नहीं पता कितना टाइम है। इसीलिए शायद योलो, यू ओनली लिव वंस, ये सिर्फ एक ट्रेंडी फेज नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जिंदगी सिर्फ फ्यूचर के लिए प्लान करने का नाम नहीं है, उसको साथ साथ में जीना भी पड़ता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम छोड़ के ही बैठ जाए। बस इतना कि जो लोग इम्पोर्टेंट हैं उन्हें बताइए, जो सपना इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ एक छोटा सा स्टेप लीजिए, और जो बात दिल में है उसे हमेशा कल के लिए मत छोड़िए। तो आज का मेरा सवाल अगेन, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो वो कौन सी एक चीज है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे, और अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए पहला स्टेप आज ही क्यों नहीं? वेल, फिलहाल तो आप जवाब दे सकते हैं 9151893 पर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी एक सवाल हमें एक रिमाइंडर की तरह याद दिला देता है कि हमारी लाइफ कितनी कीमती है यार, सच्ची में। और शायद कल का इंतजार करने से पहले आज को जीना ज्यादा जरूरी है। सुनते रहिए मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतराब के साथ और यहां पर चल रहा है जी मस्ती दिल से। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अपनी अगली चिट्ठी की ओर और ये कुछ ऐसा कहती हैं कि डियर मस्ती, माय डॉटर गोज आउट ऑफ हर वे टू डू एवरीथिंग फॉर मी, शी ड्रॉप्स एवरीथिंग व्हेनेवर आई नीड हर, आई कीप टेलिंग हर दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ एंड दैट शी शुड एंजॉय हर लाइफ विद हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, बट शी रिफ्यूजेस टू लिसन, हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड। ओके डियर लिस्टनर, सबसे पहले तो आई अंडरस्टैंड वेयर योर डॉटर इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, ओके, बिकॉज मैं खुद यू नो इस सिचुएशन में, नॉट एग्जैक्टली दिस सिचुएशन, बट आई कैन फील व्हाट शी काइंड ऑफ फील्स। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी उम्र के हो जाते हैं, एंड आई एम स्टेइंग हियर, माय मॉम इज स्टेइंग रियली फार अवे फ्रॉम मी, हर छोटी बड़ी चीज के लिए आई फील रिस्पॉन्सिबल कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, मैं नहीं तो कौन करेगा, मुझे सब कुछ करना है, बट नाउ आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी ये बात कह रही हूँ कि डैड के जाने के बाद आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, दैट आई विल बी देयर फॉर हर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वेरी मच रिस्पेक्ट हर स्पेस, शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, शी नीड्स हर स्पेस एज वेल। और ये बात मुझे यू नो धीरे धीरे काफी उनसे रोज बात करते करते करते करते समझ में आई, एंड नाउ आई एम ओके, आई डोंट यू नो जस्ट गो मैड और गेट इनटू अ पैनिक मोड व्हेन एवर देर हैज टू बी समथिंग डन। आई नो दैट शी कैन टेक केयर ऑफ इट, एंड आई ओनली टेल हर दैट किसी भी स्टेज पे इफ यू नीड मी जस्ट टेल मी, आई विल डेफिनेटली do my best to do whatever can be done. So well, it's a good thing that aap dono ka relationship itna beautiful hai, you have raised your daughter beautifully, that you know it's a good problem to have that she is so worried and concerned about you, but also you can ab next time jab wo ghar aaye aap unko bitha kar प्यार से जो है यू नो हार्ट टू हार्ट गर्ल टू गर्ल वाली जो एक बात होती है, बिल्कुल एक कप चाय पे डिस्कस करें, बात करें, उनको बताएं दैट इट्स ओके, यू कैन आल्सो एंजॉय योर लाइफ, यू डोंट हैव टू बी सो वरीड अबाउट मी ऑल द टाइम। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो एक चिट्ठी लिख दें या एक व्हाट्सएप टेक्स्ट भेज दें, आप जो फील कर रही हैं एग्जैक्टली वैसा ही उनको बताएं। एंड आई एम श्योर यू नो जब आप लिखते हो कई बार क्या होता है कि वी गो बैक टू दोस टेक्स्ट मैसेजेस एंड वी काइंड ऑफ रीड इट अगेन एंड अगेन, सो हो सकता है दैट माइट हैव अ गुड रीजनेबल यू नो शी माइट यू नो अंडरस्टैंड यू बेटर दैट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। Everything is about communication, how you tell, and I'm sure that she's going to get it. So well, कोशिश करके देखें, and अगर आप करें और उसके बाद कुछ positive आपको लगे कि उसका impact हुआ है, मुझे जरूर बताएं। Radio Masti 24/7 Live पर, I hope this helps.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ। और चलिए होते होते एक और चिट्ठी यहां पर पढ़ ही लेते हैं। सो वेल डियर मस्ती, देयर इज अ गर्ल हु रियली वांट्स टू बी माय फ्रेंड। She has genuinely tried so hard and I know she means well, but somehow I just don't feel that connection with her. I think she has started sensing it and I feel bad about it. इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? So my dear listener, सबसे पहले तो thank you for writing this letter to us, क्योंकि बहुत कम लोग इस emotion को honestly एक्सेप्ट करते हैं। यूजुअली हम सिर्फ उस दर्द की बात करते हैं जब हमें कोई रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं उस गिल्ट की जब हमें किसी को रिजेक्ट करना पड़ जाए। और मुझे लगता है आप इस वक्त वही फील कर रहे हैं। देखिए, हर अच्छा इंसान हमारा क्लोज फ्रेंड बन जाए ये कोई जरूरी नहीं है, है ना? और हर कनेक्शन लाइफ लॉन्ग कनेक्शन बन जाए ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी दो लोग बहुत अच्छे होते हैं बट एक दूसरे के लिए नहीं होते हैं, और उसमें किसी की भी गलती नहीं है। अब उस लड़की के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हो सकता है उसने आप में वो क्वालिटी देखी हो जो उसे काफी पसंद आई हो, हो सकता है वो जेन्युइनली आपसे दोस्ती करना चाहती हो, और अगर उससे ये महसूस हो रहा है कि आप उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो

being honest without being hurtful. तो अगर वो आपसे बात करती है तो उनसे वैसे ही प्यार से और रेस्पेक्ट से बात कीजिए, उन्हें इग्नोर नहीं कीजिए, एम्बेरस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को फोर्स भी मत कीजिए कि आप वो कनेक्शन फील करे जो नेचुरली आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कनेक्शन फोर्स नहीं किया जा सकता, वो या तो होता है या नहीं होता है, और दोनों ही ठीक है। सो माय डियर लिसनर, लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हर इंसान जो हमारी लाइफ में आता है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग सिर्फ एक अच्छी मुलाकात बनकर रह जाते हैं और उसमें भी अपनी एक खूबसूरती होती है। बस इतना याद रखिए, आपका सच अगर एम्पैथी के साथ बोला जाए तो वो झूठ से कहीं ज्यादा काइंड होगा, है ना? होप दिस हेल्प्स। सुनते रहिए डियर मस्ती, दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: कोई बात आप इतनी बार दोहरा लेते हैं कि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि आप वो चीज करना ही नहीं चाहते, किसी को बताना ही नहीं चाहते, है ना। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर, एंड बताते तो आप हैं, हम तो सुनते हैं, और उसके बाद जो बता पाते हैं वो हम बताते। अभी मेरे हाथों में जो लेटर है डियर मस्ती दिल से शो पर, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे अपने कमरे से बाहर निकलना नहीं पसंद है, मैं हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, एवरीथिंग, और बस यहीं से अपनी स्पेस से ही वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं पसंद है, कुछ करना नहीं पसंद है, हाँ म्यूजिक सुन लेती हूँ और आप लोगों की बातें एक तरफा सुन लेती हूँ, और आपको भी लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कॉल करना पसंद नहीं है। सो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी मुझे बीमारी लग गई है? सो डेफिनेटली आपके संग कुछ तो हुआ है, हाँ कुछ हो गया है। तो डियर मस्ती दिल से शो पर जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपकी लाइफ के जो हर दिन है, हर घंटे हैं, कितने क्रूशियल हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और ये दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है, और अगर आपको बुरी भी लग रही है तो कितनी तरह के बुरे लोग बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये देखना तो बनता है। हाँ, सो व्हाई नॉट आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एडवेंचर मोड पे डालो, है ना। और जो आपने अपने आसपास से लकीर खींच रखी है ना कि मुझे बाहर जाना ही नहीं है, दुनिया बड़ी खराब है, तो इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखना शुरू करो। दुनिया कितनी खराब है मैं तो जान के रहूंगी, मैं बाहर निकल के रहूंगी। बाहर लोग कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये पर्सनली और क्लोजली ऑब्जर्व करके रहूंगी या रहूंगा। अगर आपने ये थॉट एक दिन मन में डाल दिया ना, धीरे धीरे आप दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू कर
1: लावे। तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।
0: बिल्कुल, अभी फिलहाल एक्सप्लोर कीजिए आने वाले इस गाने को डियर मस्ती दिल से शो पर। मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
5: एक्साइटेड।
6: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है.
1: यू नो व्हाट, जो बोलो अच्छा बोलो, अदरवाइज शांत रहो. देखो, शांत रहने से अच्छा कोई सल्यूशन नहीं होता. हेलो हाय, मैं आरजे यूनो पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. एंड डियर मस्ती दिल से शो पर आप बोलते हैं और हम शांत रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन हाँ, आपका उधर से लेटर्स लिख कर देना और हमारा यहाँ उस पर बातचीत करना, बड़ा ही सुकून देता है. सो मैं आरजे यूनो पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेंगी, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि मुझे जो अच्छा लगता है, जैसा लगता है, मैं बोल तो देता हूँ लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला. तो मैं अब इस गलती को कैसे रेक्टिफाई करूँ या इस आदत को कैसे रेक्टिफाई करूँ, मुझे इसका सल्यूशन दो. सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना रेडियो मस्ती सुनिए, क्योंकि आप हमारी बातों से समझ जाएंगे कि हम कितना नाप तोल के बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं. एंड यू नो व्हाट, जब आप एक लिमिट में बोलना शुरू करते हो, ना कि आपको पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट? एंड जब आप प्रोफेशनली किसी से बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल देते हो तो आपकी बनती हुई बात बिगड़ जाती है और आप अपने शब्द वापस भी नहीं ले सकते. सो व्हाई नॉट आप अपने घर पे अपनी क्लोज्ड वंस के साथ ज्यादा बातें करना शुरू करें. इससे होगा क्या, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, किस टोन में बोलना है. जब आप अपनों के बीच गलती करोगे ना, वो सुधारी जा सकती है. लेकिन जब आप अपने दायरे से बाहर निकलकर किसी से ऐसी बातें बोल दोगे जो आपको ही नुकसान देगी, तब आती है मुश्किलें. सो डेफिनेटली आप सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स में अपनों के बीच उठना बैठना और बोलना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कीजिए, ताकि आपकी एक अच्छी पॉजिटिव हैबिट निकल कर आए. फिर आपको शायद ज़्यादा बोलने पर रिग्रेट फील नहीं होगा, शायद आप ज़्यादा बोलकर ज़्यादा कन्विंस कर पाएंगे किसी को. ओके? और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: और एक बार और फिर से रेणुका आपके साथ और आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से। जानते हैं आज की शाम फिर एक बार हमें ये ही याद दिला गई कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, हर इंसान अपनी कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा होता है, कभी दिल के साथ, कभी दिमाग के साथ, और कभी उन रिश्तों के साथ जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन अगर आज के शो से एक बात साथ लेकर जाना हो तो बस इतनी सी, दैट बी काइंड, दूसरों के साथ भी और खुद के साथ भी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज ना भी मिले, लेकिन हर बात को दिल में दबा कर रखना भी जरूरी नहीं है। कभी लिख दीजिए, कभी कह दीजिए, कभी किसी अपने का हाथ पकड़ लीजिए, और कभी बस खुद को भी माफ करना सीख लीजिए। एंड वी वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर स्टोरीज। एवरी लेटर, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, वो किसी की हिम्मत होती है और शायद किसी और के लिए उम्मीद भी। सो कीप राइटिंग टू अस। अगर अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हैं तो लिख भेजिए अब और कुछ नहीं तो एक नया जीमेल अकाउंट खोल के लिख दीजिए। नाम मत बताइए, कुछ मत कहिए, वी डोंट वॉन्ट टू नो ऑल दैट। ऑल वी नीड यू टू डू इज टॉक, बिकॉज एक बार आप जब बात करेंगे ना तो हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन उसी टाइम निकले ना निकले एक रास्ता जरूर दिखेगा, थोड़ी सी लाइट दिख जाएगी, बाकी तो हमें पता है कि आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। मैं हूं रेणुका और ये था डियर मस्ती दिल से। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दिल का भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और जिंदगी का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूजडे आज शाम 5 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 पर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको एनकोर सुनना है तो जाइए ना हमारे रेडियो मस्ती 24/7 ऐप पर और स्केड्यूल के नीचे देखिए कब रिपीट शो आता है। टेक केयर गाइज, हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड, बाय फॉर नाउ फ्रॉम रेडियो मस्ती 24/7 एंड द होल टीम।
0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: ओ, ये जो हॉस्पिटल आ रहे लो मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी यार।

0: Agora, vé.
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी।

0: जाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?
2: अरे इसे कैसे होता है?

0: ठीक से पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही करोगे क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े रहे तुम लोग?
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: अपन को हाथ नहीं लगाना।

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: Now listen. Get up. That's right.

शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सुबह सुबह शोर मचा रखा है। बंधु हो, तुम ही हो, सखा हो, ये हो, वो हो। सुबह अभी अभी भजन का एक घंटा खत्म हुआ है। थोड़ा आराम से, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्टेडी, थोड़ा धीरे, लेकिन नहीं आते तुम ही दिन
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: लो जी आ गए, बड़े बड़े पवित्र पावन लोग आ गए हैं यहाँ पर फ्राइडे वाले सुबह सुबह मस्ती मैडनेस करने के लिए। हमें तो पहचान में नहीं आ रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है। सुबह सुबह 7 बज जाते हैं तो सबको पता होता है कि कोई यहाँ पर कोई भी, वैसे भी कोई भी इतना कोई शुद्ध है नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी नहीं
0: और जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं है ना। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज मस्ती मीडिया नेटवर्क, दिस इज रेणुका, दिस इज अंतरा एंड एंड दिस इज फ्राइडे।
2: फाइनली शी रियलाइज्ड
0: सपने में मिलती है ओ कुड़ी, सपने में मिलती है। अंतरा, जो सपने में मिलती है वो हकीकत में मिल जाए तो बात ही अलग है, राइट? व्हाट डू यू थिंक?
2: तभी तो उसको कहते ना सपना।
0: हाँ, जो अभी अभी ट्यून्ड है ना ऑलरेडी, आई एम श्योर। रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो गाइस। दिस इज ऑफ कोर्स, आज की तारीख क्या हो गई है यार, 3 तारीख हो गई है, 3 तारीख जुलाई की।
2: हाँ जी,
0: है ना।
2: हाँ, आप जुलाई के इस पावन मौसम में कुछ कहना नहीं चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, मतलब अभी अभी की बात है, 6 महीने खत्म भी हो गए, आधा साल खत्म भी हो गया, है ना, वही जो हम हमेशा बोलते हैं। हाँ,
2: यस।
0: चलो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आके बड़ी सारी बातें बतानी है इनको। हाँ ठीक है।
3: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email WhatsApp

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: मैनू चाहिदा ऐसा टीचर चाहिदा, ऐसा सोचने वाला चाहिदा।
2: Oh my God, ये जब पंजाबी बोले वो भी फ्राइडे को ना, मुझे घबराहट होती है अगले 3 घंटे कैसे कटेंगे।
3: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है
2: गैस गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए, यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं मस्ती मैडनेस पर। अंतरा क्या हुआ, क्या क्या की चाहिदा तेनू, तू दस मैनू।
3: बात कुछ ऐसी हो गई कि अगर ऐसे मिनिस्टर्स आने लगे और सोचने लगे, कैसे हम लोग सोचते थे ना कि काश हर चैप्टर हिस्ट्री का, मैं सोचती थी सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर अगर गाना बन जाता तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाती।
2: या, या, या, या, या, ये मैंने भी सोचा है, ये मैंने भी सोचा है कि वो याद तो हो जाता है एटलीस्ट, रट्टे तो मारते हैं। ओह माय गॉड,
3: करेक्ट करेक्ट। सो वेल, धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है और हाल ही में ये काफी वायरल एक्चुअली न्यूज हुई, जहां पर

0: ऑनर हर डांस परफॉर्मेंस
1: रायका,
2: इसीलिए उन्होंने उसको कोर्स मटेरियल बना लिया, इज दैट राइट?
0: हाँ, सो यूनिट 4 वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर. तो सॉन्ग टाइटल में निमुड़ा निमुड़ा, फिल्म का नाम साल, सिंगर्स फीचरिंग एक्ट्रेस एंड एक्टर ऐश्वर्या राय. अरे हाय,
2: चलो थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए सुबह सुबह. कोर्स मटेरियल ही सुन लेते हैं रेडियो मसी 24/7. आई टेल यू,
0: अब चाहिदा ना, ऐसा चाहिदा.
2: मैं ऐसे जगह अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी. तू भेजेगी? तू बता, खुद बता. माय गॉड,

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: 3, 2, 1.
0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
3: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: चलिए मैं बिल्कुल इस समय आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेके जाना चाहूंगी और वहां की खबर देना चाहूंगी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अंतरा. इससे ज्यादा तुमने आंखें बड़ी करी ना तो फट के बाहर आ जाएंगी. प्लीज छोटी करो.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: इन्होंने आंखें ना लगाई होती तो पता नहीं ये सेंटेंस क्या ही बन जाता. बट देन दैट्स ओके.
2: रेडियो मस्ती 24/7 पर कुछ भी बोलते हुए यहाँ पर द नो फिल्टर शो. आपके बच्चों के कान बिल्कुल बंद कर लीजिए. कान ओके. यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे इस टाइम पर और लेके चलेंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वहां पर एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ अंतरा जी.
4: ओके.
2: कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जून 2026 में होम मेकर्स, जिनको हाउस वाइफ्स कहा जाता था एक जमाने में, अब होम मेकर्स कहा जाता है, उनका नाम बदल दिया. उन्होंने कहा ये नेशन बिल्डर्स हैं. ओके. क्योंकि आप ये सोचिए कि द लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर प्रोवाइडेड बाय अ होम मेकर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पेंसेबल हेड ऑफ डैमेजेस इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स. अब ये सारी बातें समझने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप काम नहीं भी करते तो भी आपकी वैल्यू है 30,000 पर महीने की एटलीस्ट. ओके. और अगर आप नौकरी करते भी हो तो भी ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये कॉम्पनसेशन जरूर मिलनी चाहिए ऑन टॉप ऑफ योर एक्चुअल इनकम. ऑलराइट. और इन्फ्लेशन को देखते हुए 10% एवरी 3 इयर्स बढ़नी भी चाहिए. और डेफिनेटली डोमेस्टिक केयर सर्विसेज को हम इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. ओके. कि ये डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट नहीं है, हम इन पे डिपेंडेंट है. मतलब ऐसी महान महान बातें करी हाल ही में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं तो खुशी हो गई कि टर्मिनोलॉजी बदलने से भी इंसान की कितनी इज्जत हो जाती है. तेको नहीं लगता है? बता.
4: मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं हुई व्हाइल यू वर टेलिंग मी ऑल ऑफ दीस थिंग्स. मतलब इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम नहीं नहीं हम जानते हैं, हम तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ होगा वही जो बरसों से चलता हुआ आ रहा है. तुम हाउस वाइफ ही रहोगी.
2: हाँ, तो बेसिकली हाउस वाइफ को होम मेकर कह दो तो एटलीस्ट इंग्लिश तो बन जाती है वो. उसके बाद
4: आई मीन या इफ यू आर हैप्पी विद दैट.
2: जैसे बच्चों की जो रखवाली करने वाली कोई औरत होती है उसको दाई माँ भी कह सकते हैं और उसको साथ ही में गवर्नेस भी कह सकते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स. या ऑफ कोर्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7. अब आप क्या कहें, मतलब क्या कह सकते हैं हम. बट
4: हाँ हाँ, और फ्री में जो कर रहा हूँ उसको मम्मी भी कह सकते हैं.
2: व्हाट्स इन अ नेम.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: बनके।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: यार मैं सोच रही थी कि ये आदमी जो है ये कितने भोले होते हैं, कितने मासूम होते हैं, बहुत ही ज्यादा।
3: तो चाय के 2-3 कप और कॉफी के 3-4, ठीक है, ये सब पी करा।
2: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है।
3: लगता है इसकी नींद खुली नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7। इट इज मस्ती मैडनेस।
2: मैं ऐसे ऐसी खबरें जब मतलब सामने आती है तो लगता है कि हाँ मतलब वी गेट यू मैन, यू आर वेरी वेरी सिंपल हार्टेड, कुछ आप मीन थोड़ी ना करते हो, बस आप तो हमेशा अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हो। ये तो लोग हैं जो दुनिया वाले हैं जो गलत समझ लेते हैं आपके इंटेंशन।
3: हाँ मौसी जी।
2: या सो हुआ कुछ ऐसा कि अब मियां बीवी के बीच में हुआ झगड़ा, ठीक है, बीवी आर्ग्यूमेंट हुआ तो बीवी चली गई अपने मायके, एंड शी वाज स्टेइंग देयर फॉर क्वाइट अ बिट, ठीक है, अब वापस नहीं आ रही बिकॉज ऑब्वियसली वो मनाना और वो सारा चीज हुआ नहीं। बट दिस गाय, दिस पति केम अप विद अ वेरी अनयूजुअल आइडिया एंड ही वाज लाइक कि मैं कुछ अलग करूंगा इस बार, तो बीवी बिल्कुल वापस आ जाएगी इसको करते हुए। सो वो जो इंडिया की गलियों में मिलते हैं ना ये बीन बजाने वाले स्नेक चार्मर्स, या तो उसको उसको थोड़े पैसे दिए और कहा कि ये है मेरी बीवी का घर, इसके घर के सामने तुम बीन बजाओ। तो उसने कहा कि मतलब जब स्नेक चार्मर अपना बीन बजाएगा तो बीवी बाहर आ जाएगी। अब नो इंटरनेट इज इन स्प्लिट कि भाई तू बीवी बुला रहा है, नागिन बुला रहा है।
3: It's called लू चाय उल्फत। तो उसको लग रहा था वो चार्म हो जाएगी विद द चार्मर।
2: हाँ, he only focused on the charm and forgot that it might mean a lot more than why would you hire a snake charmer and get all the attention?
3: ऊपर से लड़ाई,
2: मोहल्ले वाले बाहर आ गए और ये अपना बजाया जा रहा है। द स्नेक चार्मर डजंट इवन नॉट कैरिंग अ स्नेक आल्सो, व्हिच आल्सो इंटेंडेड कि भाई अब पता ये नहीं लग रहा कि बीवी एक्चुअली वापस आई कि नहीं आई। मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई क्या हुआ इस आदमी के साथ इवेंचुअली।
3: तो जैसे कहते हैं न्यूज चैनल्स, हम इस खबर पर बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि चार्म काम किया या नहीं किया। फिलहाल के लिए आसपास के सारे सांप जरूर बाहर आ गए होंगे। ऑन रेडियो मस्ती गाइस, अगली खबर, क्योंकि अब सांपों की शुरू हो ही चुकी है, सो लेट मी टेल यू कि 300 सांप किधर थे जो निकल के बाहर आए। गुड मॉर्निंग।

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: और कुछ ही देर पहले हमने बात करी थी स्नेक चामर की, और स्नेक चामर का इस्तेमाल हुआ सांपों को बाहर निकालने के लिए नहीं, लेकिन अंतरा जी कहती हैं कि बीवी को घर लाने के लिए. नाउ दैट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव बाय द वे, सोचे समझे बिना.
3: आई एम
4: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज
2: एब्सोल्युटली क्रेजी खबरें. इस शो पर आपको मिलती है दिस कॉल मस्ती मैडनेस. और अगली खबर जो है चाइना से आ रही है, जहां पर 300 पाइथन्स,
5: 300 छोटे भी नहीं, सो बिग
2: पाइथन सारे के सारे. एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि तू सोच, घर में 300 पाइथन रखे हुए हैं तूने, ठीक है, पाल रहे हो तुम, ब्रीड कर रहे हो, और ऑब्वियसली इट इज नॉट अलाउड, राइट? लेकिन किसी को पता नहीं लग रहा, सालों साल तक तुमने रखा हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी को पता नहीं लग रहा है. लेकिन किसको पता लगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को. पूछो कैसे पता लगा?
5: पता लगेगा.
2: हाँ, बिकॉज हुआ कुछ ऐसा कि ये जो पाइथन्स है ना, इनको रखने के लिए हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, और वो हाई हीट से मैसिव पावर कंजम्पशन एक घर का हो रहा है. अब उस एक घर का ऑब्वियसली हाईलाइट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि भैया सर्दी हो गर्मी हो, ये लोग हाई हीट कंजम्पशन क्यों करते हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? सो वहां से उन्होंने सोचा जरा जाके तहकीकात करी जाए, और फिर पता लगा कि भाई वहां पर सीरियस इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ को, 300 पाइथन्स को रखा जा रहा था. और वो आदमी मतलब बड़े मजे से कि मैं तो भाई ब्रीडिंग करता हूँ. भाई साहब, आप ब्रीडिंग करते हो, आप क्या करते हो, ये सब अलाउड तो है नहीं. लेकिन इमेजिन ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ही नेवर थॉट कि बिजली डिपार्टमेंट पकड़ लेगा मुझे, और आसपास वालों को पता भी नहीं लगेगा.
5: भाई, व्हेन यू डू अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हैपेंस टू यू आल्सो.
2: एब्सोल्युटली. और एक छोटा सा सांप जो वहां से एस्केप हुआ था, वो भी लोगों की नजर में आया ही था, लेकिन वो
5: पाइथन छोटा,
2: हाँ छोटा बेबी पाइथन, 2-3 फुट का बेबी पाइथन.
5: वाह.

0: 8 बजे के उस पर एक चीज कहना चाहूंगी कि गाली देना पाप है, नदी किनारे सांप है।
1: ओ यार, कैन वी लीव द सांप अलोन नाउ?
2: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है
1: पहले सपेरे की खबर, उसके बाद 300 सांपों की खबर, और अब सांप का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। देखो स्टूडियो में ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा जी, क्या खबर है बताइए मस्ती मैडनेस में अगली आपकी।
2: हाँ, अगली बार मैं रेणुका को बोल के जाऊंगी कि पता नहीं हर आहट पे इनको, सरसराहट पे इनको लगेगा कि कुछ शायद कोई आया।
1: बिल्कुल है ना, बिल्कुल, why not? बिल्कुल लगेगा।
2: तो भाई कुछ ऐसा हुआ, चंद्रपुर की खबर ले आई हूँ। चंद्रपुर में कुछ ऐसा है कि एक 85 ईयर ओल्ड औरत, ठीक है, 3 बार पुलिस कंप्लेन कर चुकी, वो बहुत परेशान 3 बार वो ऑलरेडी कर चुकी, फिर भी उसका केस क्लोज कर दिया गया। बहुत ही दुखी अपने स्टेप सन से नहीं परेशान, वो अपने पड़ोसी से नहीं परेशान, वो परेशान है तोते से।
1: तोते
2: तो, यस, क्योंकि 2 साल, like 2 साल भी क्या, आई थिंक शी हैज काउंटेड द डेज ऑल्सो, फॉर 730 डेज दिस तोता हैज अब्यूज्ड दिस वुमन, या लेफ्ट राइट सेंटर।
1: ओके,
2: या भाई, तोते का नाम हरियाल, ठीक है, ये जो इसका स्टेप सन है, उसने 2 साल की ट्रेनिंग दी इस हरियाल को कि जैसे ही ये जो मेरी स्टेप मदर दिखे ना, शुरू हो जाना। 2 साल की ट्रेनिंग है, जब भी जाना भाई जो है उसके सामने से जाती, हमारा ये तोता चोच खोलता और शुरू हो जाता अपना XYZ, चल रहा है। अब क्या है कि पुलिस ने कहा कि ठीक है लेके आओ, तीनों पार्टी लेके आओ, तोते को भी लेके आओ। अब जानाबाई हरियाल यानी कि तोते के सामने खड़ी हुई है, तोता कुछ बोल ही नहीं रहा।
1: ओ, वहां नहीं बोल रहा, पुलिस के सामने
2: बोला ही नहीं।
1: We love that. अच्छी ट्रेनिंग दी है और कुछ होना हो,
2: है ना? I like, out of all the places, how smart of the tota.
1: He knows. भाई देखो, ऐसी बात है, this is abuse of animals. It is not abusive animal.
2: Yeah. So police said that no law covers parrot abuse. So case is closed. But हरियाल जो है वो वापस सुरेश के पास नहीं गया, उसको forest department को दे दिया गया।
1: चलो कुछ तो punishment मिली, वहां जाके गालियां दे रहा होगा किसी को।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.